ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक सवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए

0: वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 12। मुख्य गायक स्वर है रविंद्र साठे का। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, एपिसोड संख्या थी 12। मुख्य गायक स्वर था रविंद्र साठे का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे रवि मिश्रा की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों का गाया। आइए सुनते हैं ब्रजराज सिंह का गाया ये भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत अभी आपने सुना, राकेश तिवारी और साथियों का गाया। वंदन कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति है राकेश रंजन की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत। प्यासा सावन, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। संतोष आनंद का लिखा ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने

0: कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए अब सुनते हैं भीगी पलकें। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में

ये गीत सुनिए, दिल एक मंदिर फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त सोनिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में होती है कुछ बातें और सुनवाए जाते हैं आपको प्यारे प्यारे से गीत।

दोस्तों, सुबह की इस ताजगी भरी वेला में आपका दिल से स्वागत है। उगते सूरज की सुनहरी किरणें आपके जीवन में खुशियों की रोशनी भरते और आज का दिन आपके लिए नई सफलताओं का संदेश लेकर आए। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नई कहानी है। जो मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करे, कामयाबी उसी की दीवानी है।

दोस्तों, सुबह का समय प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार है। यह वह समय है जब मन शांत होता है और विचार सबसे निर्मल होते हैं। और कहा भी गया है कि आज का स्वागत कीजिए, क्योंकि जीवन हर सुबह एक नया पन्ना खोलता है। आप अगर अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करते हैं तो पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता है।

में अगर हम शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि हमें खुद को बदल लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से तो खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज़्यादा सही है।

दोस्तों, कई बार होता है कि हम हर चीज़ के लिए शिकायत करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो दोस्तों, जीवन

सूर्य नगरी चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। दोस्तों, अक्सर हम बड़ी सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से ही हासिल होती है। आज एक छोटा प्रयास भी आपको कल आपके लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। इसीलिए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें।

दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लग जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार आने वाली कठिनाइयाँ हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। तो जब भी कठिनाई आए, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको पार कीजिए, और हर चुनौती अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है, और उसी सीख से हम आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो जाते चलते यही कहेंगे कि मुस्कुराहट वह इत्र है जिसे जितना दूसरों पर छिड़को उतनी ही खुशबू खुद में आती है। तो आज पूरे दिन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम बस यहीं तक। मैं थी आपके साथ आपकी होस्ट दोस्त सोनिया। दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से

0: विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रूपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रूपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात

0: सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री

0: सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The defense

सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यही तो आपका भ्रम है। जबकि हकीकत तो ये है श्रोताओं कि मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।

जी हाँ श्रोताओं, इसीलिए कहते हैं कि जो संदेह है मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। तो देख लीजिए कि अगर मन प्रसन्न है तो आपके दुख दूर हो जाते हैं, और संदेह अगर आपके जीवन में है तो उससे मुसीबत के पहाड़ जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रखते हैं विश्वास अपनों पे तो पहाड़ों में से भी रास्ते जो हैं अपना निर्माण कर लेते हैं। जी हाँ, इन बातों के साथ कर दिया है आगाज आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

जी श्रोताओ, नमस्कार के आगाज के साथ पूरी टीम है तैयार, तो आइए करवा देते हैं आपका परिचय आज की टीम से। चलिए श्रोताओं, ले चलते हैं आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि एचपीटी पर हमारे साथ हैं विक्रम सिंह भाटी और प्रकाश पमार। एफएम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीएल सोनी।

अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं सोनिया देवड़ा और हिना खान। श्रोताओं, हमारे प्रोग्राम की थीम तैयार की है हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर संजय व्यास ने। और श्रोताओं, प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन है राजेश लामरोड का। पूरी टीम के साथ मैं हूं सीमा शर्मा।

श्रोताओं, कई बार हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं और उसे छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। और कितना झूठ बोलेंगे, ये जो चीज़ें अगर हमारी हैबिट में हो जाती है तो ये भी हमारे व्यक्तित्व को एक गलत दिशा दे देती है। तो कुछ ऐसी ही बात थी, एक बार चार दोस्त थे, कॉलेज में थे और काफ़ी देर तक पार्टी वार्टी करते रहे और खूब मौज मस्ती उन्होंने की। अगले दिन उनका एग्जाम था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी चिंता नहीं की और पढ़ाई भी नहीं की। श्रोताओं, जब सुबह उन्होंने परीक्षा से बचने के लिए बात सोची तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने शरीर पे खूब सारा तेल मिट्टी लगा ली और पहुंच गए डीन साहब के ऑफिस। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि वे पिछली रात एक शादी में गए थे और वापस आते समय उनकी गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो गया था, इसलिए उन्हें गाड़ी को धक्का देकर कैंपस तक लाना पड़ा। श्रोताओं, जो डीन साहब थे उन्होंने उनकी दुख भरी कहानी सुनी और फिर विचार किया। उन्होंने उन्हें 3 दिन बाद पुनः परीक्षा देने का जो प्रस्ताव था वो दे दिया। चारों दोस्तों ने डीन सर को धन्यवाद दिया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब क्या था, अब आ गए कॉलेज और कॉलेज से घर और परीक्षा की तैयारी करने लगे। जिस दिन परीक्षा का दिन आया, आकर वो डीन साहब के पास गए तो डीन सर ने परीक्षा के लिए उन सभी को सबसे पहले तो अलग अलग कमरों में बिठा दिया। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उन्होंने खूब पढ़ाई अब तक कर ली थी। श्रोताओं, फिर उन्होंने परीक्षा पत्र जब देखा तो उसमें केवल 2 ही प्रश्न थे। क्या आप जानते हैं कि ये 2 प्रश्न कौन से थे? जी हाँ श्रोताओं, उसमें 2 ही प्रश्न थे। पहला था आपका नाम, जो कि था 1 नंबर का, और दूसरा जो प्रश्न था वो मल्टीपल चॉइस टाइप था, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न था, जिसमें यह पूछा गया था कि कौन सा टाइप

पैर फटा और ये था 99 नंबर का। जी हाँ, जिसमें विकल्प ये दिए गए थे, ए में दिया था बायां आगे का टायर, बी दायां आगे का टायर, सी बायां पीछे का टायर और डी जो था दायां पीछे का टायर। तो ये जो चीजें हैं श्रोताओं की, इस बात से जो डीन साहब थे उन्होंने सच को समझ लिया था कि क्या असली कहानी है, तो हमें यही समझने को मिलता है, यही सीख मिलती है कि झूठ का सहारा जो है वो कभी भी काम नहीं आता। आप अपनी सच्ची बात रख दें, हमेशा जिम्मेदार रहें, समझदारी से निर्णय लें और फिर झूठ को साइड में कर दें और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि झूठ का सहारा जो है वो कभी भी काम नहीं आता है श्रोताओं।

जी अंशुता, हर दिन अपने साथ कुछ यादें लाता है, कुछ उपलब्धियां लाता है और लाता है कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। और ये बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन के इतिहास में क्या-क्या खास हुआ था।

जी श्रोताओ, समय की गाड़ी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन के इतिहास में क्या दर्ज है। जी हाँ, 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1964 में बंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम जो थी वो अंतिम बार चली थी श्रोताओं, और 31 मई 1994 में दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना था। 31 मई 1996 की अगर हम बात करते हैं तो बेंजामिन नेतान्याहू इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने गए थे श्रोताओं। एडोल्फ ट्यूटर स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कृष्ण प्रसाद भट्टराई द्वारा नेपाल के प्रधान

मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुई थी 31 मई 1999 को, और श्रोताओं 2001 में मानवाधिकार आयुक्त रॉबिन्सन का कार्यकाल बढ़ा था। पूर्व सोवियत देशों का राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन मिस्क यानी बेलारूस में संपन्न हुआ था 31 मई 2001 को। श्रोताओं 2007 में सैप ब्लेटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे, और 31 मई 2010 में, जी हां, भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था।

जी श्रोता, हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो हर दिन अपने मिजाज बदल रहा है, और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है चीज़ों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों में आने जाने में असुविधा भी हो रही है। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात बताएंगे जो खास बात बन जाती है, क्योंकि आज भी 11 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और सवाई माधोपुर में आज तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रोताओं, हवा की रफ्तार जो है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई गई है। और हम ये देखते हैं कि अलर्ट आने के बावजूद भी लोग जो हैं, या तो इसे एडवेंचर समझ लीजिए या फिर लापरवाही समझ लीजिए, अलर्ट सुनने के बाद भी लोग घरों के बाहर निकलते हैं।

खुद के लिए परेशानी का सबब बना लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम जो है वो इस तरह के मौसम का अनुमान है कि 4 से 5 दिनों तक इस तरह का मौसम रहेगा। तो अगर आपका बहुत जरूरी काम नहीं है तो घर के बाहर बेवजह ना निकलें और खुद के लिए परेशानी का कारण ना बने। श्रोताओं,

श्रोताओं, हर कोई अपने जीवन में खुशियां चाहता है, और अगर ये बात कही जाए कि सबसे पहले खुशियों की दस्तक हर कोई अपने जीवन में चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो दस्तक है ना, ये बिना वजह नहीं हो पाती है। उसके पीछे एक छोटे सा एक रीज़न होता है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो जो खुशियाँ हैं सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो ये जो छोटा सा काम है वो क्या है? जी हाँ, वो आपको बता दूं कि जब भी आप दुआएं करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए। फिर आप देखिए कि जो खुशियां हैं वो सबसे पहले आपके घर का दरवाज़ा ढूंढेंगी और कर देंगी नॉक नॉक।

श्रोताओं, 9 बजने वाले हैं और यहाँ आपको पता है हम रुकते हैं न्यूज ब्रेक के लिए और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉ सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होता है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। श्री सिंह ने बताया कि नौसेना को दुश्मन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी और ताकत के साथ अरब सागर में तैनात किया गया था।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: फुलेरा के पास हिरनोदा गांव में थार ड्राईपोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियालो राजस्थान में पौधरोपण के लिए 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गई। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारा में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है, बल्कि संस्कृति, ज्ञान और

0: और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
1: भारत के साहित्यकार कवि लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहित्यकार गीतकार लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार हैं उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 30 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और जैसा कि आज है 31 मई और श्रोताओं 31 मई जो है हर वर्ष मनाया जाता है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, या फिर इसे कहें अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। तंबाकू से होने वाले नुकसान को देखते हुए साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा 7 अप्रैल 1988 से इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया। इसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया गया। श्रोताओं, WHO के सदस्य देशों ने 31 मई का दिन निर्धारित करके धूम्रपान के सेवन से होने वाली हानियां और खतरों से विश्व जनमत को अवगत करा के इसके उत्पाद और सेवन को कम करने की दिशा में आधारभूत कार्रवाई करने का प्रयास किया। श्रोताओं, इसी दिशा में हर वर्ष प्रतीकात्मक रूप से एक नारा भी निर्धारित किया जाता है और हर वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे को एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, तंबाकू और उसके उत्पाद, इनके सेवन से जो जुड़े जोखिम है श्रोताओं, और परिवार, समाज और पर्यावरण पर इसके जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी सबकी कोशिश होती है। आप जानते हैं तंबाकू का सेवन कई प्रकार के कैंसर जैसे फेफड़े, स्वरयंत्र, मुंह, ग्रासनली, गला, मूत्राशय, गुर्दा, यकृत, पेट, इन तमाम तरहों के जो कैंसर है, इनका प्रमुख कारण बन जाता है और ऐसा अनुमान भी है।

कि तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि कई तरह से पर्यावरण पर भी बुरा असर डालता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 जो है उसका विषय है श्रोताओं, आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। जी हाँ, ये विषय इस बात को उजागर करेगा कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग बच्चों और किशोरों को लुभाने के लिए जो अलग अलग उत्पाद हैं, जैसे ई सिगरेट है, निकोटीन पाउच है और इसी तरह के उत्पाद हैं, उनको किस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित और उनका विपणन करता है।

जी श्रोताओं, इतने प्यार से जो मनहार की गई कि मत पियो सा, तो बिल्कुल उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है यानी कि तंबाकू, उसका बिल्कुल हमें कहते ना बहिष्कार करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि एक साथ आदत नहीं छूटती है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो अधिक से कुछ कम पे आएं और कम से फिर बिल्कुल ख़त्म करने पर आएं, तो कहीं भी मुश्किल नहीं होगी। खैर श्रोताओं, बढ़ते हैं आज की तारीख में आगे और ले चलते हैं आपको उस ओर जहां पर कुछ शख्सियत जो आज के दिन में दर्ज हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, 1950 से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे, जिन्हें देवानंद जैसे अभिनेताओं की सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है, जिनका जन्म हुआ 31 मई

1925 को पंजाब के लुधियाना शहर में। जी हाँ श्रोताओं, मैं बात कर रही हूँ राज खोसला की। इनका बचपन से ही जो रुझान था वो गीत संगीत की ओर था और प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे राज खोसला। आकाशवाणी में बतौर उद्घोषक और पार्श्व गायक का काम करने के बाद आप 19 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ पार्श्व गायक की तमन्ना लिए पहुंच गए मुंबई और वहां मिले जो उनके चाचा देवानंद के पिता जो थे किशोरी आनंद, उनके गहरे दोस्त थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जो है काम कर जाता है श्रोताओं, और इस तरीके से वो भी दिल में ये तमन्ना लेकर पहुंच गए थे मुंबई। और फिल्मी करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो मुंबई आने के बाद राज खोसला ने अप्रोच किया था रंजीत स्टूडियो में, वहां अपना स्वर परीक्षण कराया और इस कसौटी पर खरे भी उतरे। लेकिन जो मालिक थे उस स्टूडियो के, सरदार चंदूलाल जी, उन्हें बतौर पार्श्व गायक अपनी फिल्म में काम करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। उन दिनों जो ये स्टूडियो था इसकी कुछ आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और सरदार चंदूलाल जो थे वो नए पार्श्व गायक की अपेक्षा मुकेश जी पर ज्यादा भरोसा करते थे और उन्होंने अपनी फिल्म में मुकेश को ही पार्श्व गायन करने का मौका देना उचित समझा। लेकिन इन्होंने भी श्रोताओं हार नहीं मानी। राज खोसला द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में अगर हम बात करें तो मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो रास्ते, सोलवां साल, काला पानी, एक मुसाफिर, एक हसीना, चिराग, मेरा साया, ये वो प्रमुख फिल्में हैं जिनका जैसे जैसे मैंने नाम लिया वैसे वैसे आपके दिमाग में इन फिल्मों के जो पोस्टर्स थे उन्होंने तस्वीर जरूर उकेरी होगी। उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी थी श्रोताओं जो 80 के दशक में व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं रही, और इन फिल्मों की अगर हम बात करें तो इनमें दासी, तेरी मांग सितारों से भर दूं, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन और माटी मांगे खून शामिल हैं। हालांकि वर्ष 1984 में प्रदर्शित फिल्म सनी जो थी इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत व्यापार किया और वर्ष 1989 में प्रदर्शित फिल्म नकाब राज खोसला के सिने करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई थी। लेकिन अगर हम कुछ पीछे फिर से चलते हैं श्रोताओं तो हम देखते हैं कि गुरुदत्त के तहत उन्होंने अपना करियर शुरू करने के बाद सीआईडी जैसी हिट फिल्म्स जो थी वो बनाते रहे। वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और जो इनकी सबसे क्लासिक फिल्म है जैसे मैं तुलसी तेरे आंगन की, जो कि बनी थी श्रोताओं 1978 में। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिलाया था।

जी श्रोताओं, बढ़ते हैं 31 मई में आगे। और आज के दिन में ही एक और ऐसी शख्सियत दर्ज हैं जिन्हें भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकारों में जाना जाता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अभिनय से सजी फिल्म अजूबा का जो पार्श्व संगीत है वो भी दिया था। तमस, अंकुर, मंथन, मंडी, जुनून और कलयुग जैसी फिल्मों में भी आपने संगीत दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वनराज भाटिया की। इनका जन्म हुआ 31 मई 1927 को। वनराज भाटिया को 1988 में गोविंद निहलानी की फिल्म तमस में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था श्रोताओं, और 2012 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने 60 के दशक में कई मशहूर एड फिल्मों का संगीत देते हुए अपने संगीतमय करियर की शुरुआत की थी। श्रोताओं, सन 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। वनराज भाटिया ने लंदन स्थित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा ली थी। 70 और 80 के दशक की समानांतर फिल्मों में सुमधुर संगीत देने के लिए आप मशहूर रहे। एक समय सिनेमा जगत में इनका बहुत ऊंचा नाम था और इनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए गाने खूब पसंद किए जाते हैं श्रोताओं। करियर की ऊंचाइयों को छूने वाले वनराज भाटिया ने जीवन के अंतिम वर्षों में काफी आर्थिक संकट भी देखा। गायकों, गीतकारों और संगीतकार के हितों का ख्याल रखने वाली इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी जो है, उसकी ओर से भी उनकी आर्थिक मदद की गई थी।

जी श्रोताओं, साल 1974 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म अंकुर बतौर संगीतकार वनराज भाटिया की पहली फिल्म थी। कई फिल्मों में वनराज भाटिया ने पार्श्व संगीत दिया था श्रोताओं, और जिसमें जैसा मैंने आपको बताया था अजूबा थी, दामिनी और परदेस, ये भी जो फिल्में थी इन मुख्य धाराओं की फिल्मों से भी वो जुड़े रहे थे। और साल 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।

जी हाँ श्रोताओं, रविवार की सुबह है प्यारी, लेकर आई किरणें न्यारी। सूरज हंसकर देता संदेश, मेहनत से ही मिलता विशेष। थोड़ा आराम थोड़ी मुस्कान, खुशियों से भर जाए जहान। बीते सप्ताह की सारी थकान, आज बनी नई उड़ान की पहचान। जी हाँ, रविवार जिसका संबंध सूर्य देव से माना जाता है और इसे ऊर्जा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का दिन

0: भी माना जाता है। तो आप समझ गए कि हम बात कर रहे हैं उस स्पेशल सेगमेंट की जिसका रहता है आपको भी बेसब्री से इंतजार, यानी कि मेहमान का रविवार। श्रोताओं, मेहमान का रविवार हमारी कोशिश रहती है कि आपको उस शख्सियत से बातचीत करवाएं, उनकी बातचीत सुनवाएं, उनके रविवार के बारे में कुछ खुद जानें और कुछ आपको उनसे परिचित करवाएं। तो ऐसी शख्सियत जिनका नाम शायद ही ऐसा कोई डांस प्रेमी है या फिर मैं कहूँ स्पेशली क्लासिकल डांस लवर है जो नहीं इनके नाम से वाकिफ हो, ऐसा ही शायद कोई होगा। जी हाँ, आज की जो हमारी शख्सियत है, नाम मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी लेकिन उनके बारे में आपको बताना जरूर शुरू कर देती हूँ। आपने विशारद की उपाधि ली है कथक डांस में और पिछले 32 सालों से आप इस फील्ड में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं और हर रोज हर दिन कहते ना अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाने की आप में तलब रहती है। साथ ही साथ ये जो जर्नी है आपकी, इस जर्नी में, इस यात्रा में आपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल शोज भी किए हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है, आपने अपनी कंट्री को कहते ना कि रिप्रेजेंट भी किया है कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज में आपने पार्टिसिपेट किया और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई विनर के तौर पर। आपको बहुत सारे प्रेस्टीजियस ऑनर्स और अवार्ड्स भी मिले हैं श्रोताओं डांस के फील्ड में, जिसमें नृत्य डांस गुरु अवार्ड, रविंद्र रत्न पुरस्कार, बेस्ट कथक गुरु अवार्ड और राजस्थान संगीत अकादमी अवार्ड। जी हाँ, ये सारे जो अवार्ड्स हैं ये तपस्या के बाद मिलते हैं श्रोताओं, और जब 32 सालों से आप इस फील्ड में, इस तपस्या में रंग जोड़े जा रहे हैं तो आपके डेडिकेशन, आपके कमिटमेंट के लिए ये शब्द जो हैं वो काफी छोटे रह जाते हैं। जी हाँ, स्वागत करते हैं हम हमारे प्रोग्राम में अनुपमा वकील जी का। अनुपमा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते अनुपमा जी, आपके लिए सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने, बहुत बिजी आपका स्केड्यूल रहता है, उसमें से हमारी आकाशवाणी परिवार को संडे में से कुछ वक्त आपने देने की हामी भरी और आप हमसे जुड़े।
1: धन्यवाद
0: मैम। मैम, थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलेंगे तो हमारे श्रोता जो हैं उस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे।
1: धन्यवाद मैम।
0: जी मैम, जी मैम, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जोधपुर में नहीं हैं अभी लेकिन फिर भी आपने हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हाँ भर दी, तो एक विशेष धन्यवाद उसके लिए भी आपको।
1: जी मैम, एक्चुअली मैं आज हाँ ही भर दी तो कब भर दी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादातर हम लोग टूर करते हैं,
0: जी,
1: बच्चों को क्लास लेते हूँ
0: जी,
1: इसके अलावा जो भी उनको ज्ञान मिलता है तो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए और लेकर जाती हूँ, मैं खुद बच्चों को लेकर जा रही हूँ।
0: जी जी जी,
1: तो फिर कभी तो ऐसा ही आएगा कि मैं नहीं होंगी तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
0: ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है मैम कि टूरिंग प्लस हम अपने मन की बात भी कर पाते हैं, अपने संडे को भी इंजॉय करते हैं और कुछ वक्त जो है अपने लिए भी निकाल पाते हैं। तो मैम, शुरुआत करते हैं कि कैसे आप अपना संडे स्पेंड करते हैं, किस तरह से, क्या कुछ स्पेशल इस दिन के लिए होता है, मॉर्निंग में कुछ स्पेशल चीज होती है, कैसे आपके संडे की शुरुआत होती है?
1: एज यूजुअल मैम, मैं कथक डांसर हूँ
0: जी,
1: और एक अब मेरा ऐसा लगता है कि डांसर से ज्यादा मैं टीचर बन गई हूँ
0: जी,
1: तो मेरा ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाऊँ। तो एज यूजुअल संडे भी शुरुआत तो क्लास से ही होती है मेरी, पर वो होता है कि उस वक्त बच्चे अर्ली मॉर्निंग आते हैं
0: जी,
1: 7 to 8, 8:30 तक मैं अपना रियाज करके तो 9 o'clock से बच्चे आते हैं।
0: ओके,
1: शुरुआत मेरी डांस से ही होती है।
0: तो आप,
1: फिर बाद का टाइम है जो थोड़ा सा घर को ठीक करना, फिर बाकी के जो सोसाइटीज के काम होते हैं।
0: मैम, एक खास बात होती है, देखिए ना, जोधपुर है, फूडी जगह है, यहाँ पे फूड लवर्स भी बहुत हैं, तो क्या जैसे संडे के दिन कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट या कुछ स्पेशल खाने के लिए आपका दिल नहीं करता है कि कुछ अलग बनाया जाए, कुछ अलग खाया जाए?
1: जी मैम करता है, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है
1: तो
0: जी।
1: संडे को जो हम लोग क्लास रखते हैं उसमें हमारा

0: भी शोज होते हैं, कहीं कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी रिहर्सल्स होती है.
1: ओके.
0: बाकी दिन तो रेगुलर क्लास होती है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स भी देते हैं
1: हाँ जी.
0: और विशारद ये सब अटेंड करते हैं बच्चे, तो वो तब तो रेगुलर क्लास होती है. उस वक्त शोज की प्रैक्टिस कम कर पाते हम लोग.
1: जी
0: तो संडे को फिर ये होता है कि बच्चे आ रहे हैं, तो मेरा ये होता है कि फटाफट अपना रियाज किया और साथ साथ में कुछ खाना भी. आपको पता है लेडीज का क्या होता है कि मतलब डांस चल रहा है लेकिन किचन में कुकर की सीटी भी
1: जी
0: चल रही है, तो
1: बिल्कुल
0: संडे
1: सही.
0: को ऐसा जरूर होता है. तो बच्चों को मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना पसंद है, राजमा चावल है, सिंपल आलू की सब्जी और उनको पूड़ी पसंद है, तो मैं वो बना के रखती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
1: जी
0: आती हैं गर्ल्स और सीखती हैं, फिर हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं. तो मेरा एंजॉय यही होता है, क्योंकि पूरा लाइफ मैंने अपने डांस को दिया है.
1: जी बिल्कुल.
0: संडे होता है कि हम बच्चे सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं. कभी कभी कोई बच्चे की मम्मी भी कुछ अच्छा बना रही होती है, तो वो भी उनके साथ में भेज देती है, तो हम सब साथ में बैठ करके खाना खाते हैं
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: फिर संडे एंजॉय करते हैं.
1: बहुत सुंदर. मतलब आपने जो बात कही ना, मैं उस चीज़ को बिल्कुल इमेजिन कर रही हूँ, और मैं भी एक क्लासरूम में बैठी हूँ जहाँ पे आपके हाथ की गरम गरम पूड़ी और आलू की सब्जी जो है वो भी मैंने टेस्ट की है. तो बहुत सुंदर. और क्योंकि देखिए ऐसा होता है, परिवार के साथ तो हम रहते ही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपकी कंसर्न जो है ये बहुत अच्छी चीज़ शो कर रही है मैम. और बच्चों का आपके प्रति जो लगाव है, प्यार है, वो भी इस बात से हम समझ सकते हैं
0: मैम,
1: मैम.
0: क्योंकि क्लासिकल
1: जी
0: डांस क्या है ना कि बच्चों को डांस तो सिखाता है, के
1: जी
0: साथ साथ हमारा जो कल्चर है उसके बारे
1: राइट,
0: में उनको जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी
1: बहुत
0: होती है.
1: जरूरी है. बिल्कुल
0: और
1: जी.
0: आज के समय में पेरेंट्स बिजी हैं, क्योंकि अब किसी भी चीज के लिए एज नहीं रह गई है, तो
1: सही बात है.
0: मम्मियां भी हैं, कुछ ना कुछ सीख रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ
1: जी
0: इन्वॉल्वमेंट है उनका. इवन नानी दादी भी, जैसे हमारी नानी दादी तो बिल्कुल फ्री रहती थी,
1: जी
0: उनका एक ही काम है, सुबह पूजा किया और बच्चों को सारा चीज जो भी समझाना है, जब भी
1: जी
0: टाइम मिलता है स्टोरी सुनाते हैं ये सारी चीजें. पर
1: जी
0: अब वो थोड़ा थोड़ा लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि
1: बिल्कुल सही,
0: नानी दादी भी कहीं ना कहीं बिजी हैं.
1: बिल्कुल,
0: तो फिर उस टाइम में टीचर की ड्यूटी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गई है,
1: बहुत इम्पोर्टेंट रोल
0: उनको
1: है. जी
0: सारी चीजें समझाना कि हम डांस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, डांस का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है.
1: जी
0: तो वो सारी डेप्थ की बातें हैं वो रेगुलर क्लास में नहीं कर पाते हैं, तो ये सब
1: राइट.
0: एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा टाइम में करते हैं. तो मुझे तो बहुत मजा आता है कि आज संडे है, बच्चे बोलते हैं मैम पहले डांस फिर लेक्चर टाइम, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें बच्चों को समझाते
1: नहीं,
0: हैं.
1: बहुत बढ़िया
0: और
1: बात है, और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं मैम. क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे आजकल मम्मी और इवन जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग भी मतलब उतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट से. और एज अ टीचर आपने ये इतना बड़ा, कहते हैं ना, बेड़ा उठा रखा है, बहुत ही काबिले तारीफ है मैम जी. मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए आपने बच्चों को संस्कार आप सिखा रहे हैं, डांस के प्रति पूरा आपने जीवन समर्पित कर रखा है. और लेकिन फिर भी कहीं एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे जो दोस्त होते हैं उनकी कमी हमें ज़रूर खलती है. तो क्या कोई ऐसे आपके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप संडे जो एक दिन होता है उस दिन में शामिल कर लेते हैं?
0: ऐसा होता है पर
1: जी
0: बहुत रेयर केस में होता है.
1: ओके.
0: कभी जैसे लाइक मेरा बर्थडे है, बर्थडे के दिन नहीं हम कभी भी मिल पाते हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे लगभग एक महीना चलता है.
1: ओके.
0: जितनी भी क्लासेस है वहाँ पर सब बच्चे अपने अपनी तरीके से तैयारियां करते हैं, मतलब कितना भी मना कर दो फिर भी
1: फिर
0: उनका
1: भी
0: वो रहता
1: करते
0: है कि
1: हैं.
0: नहीं मैम को सरप्राइज करना है हमको किसी भी तरह. हर बार कुछ अलग करते हैं, मतलब किसी
1: जी
0: चीज के लिए अगर मैं उनको मना करती हूँ
1: जी
0: कि अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, तो कुछ नया लेकर के आ जाते हैं.
1: जी
0: तो वो एक महीने तक चलता है. तो फिर
1: जी
0: मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, तीन चार है, तो हम लोग फिर एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसे मिले, तब तक किसी और का बर्थडे भी आ जाता है.
1: लेकिन
0: तो
1: ये भी एक
0: वो
1: नया
0: संडे ये
1: एक्सपीरियंस हो
0: रहता है.
1: जाता है,
0: हाँ,
1: रिफ्रेशिंग
0: तो वो
1: रहते
0: एक संडे
1: हैं.
0: होता
1: जी
0: है.
1: जी
0: जी मैम जी.
1: नहीं, बहुत बढ़िया मैम कि जो फ्रेंड से मिलने का जो 1-1.5 महीने बाद जो चार्म रहता है कि भाई आपका बर्थडे जो है मैम वो आपको रिफ्रेश करे रखता है, 1-1.5 महीने
0: हाँ
1: तक वो चीज़ें चलती रहती हैं, सेलिब्रेशंस चलते हैं, तो इतना सारा
0: जी
1: प्यार जो आपको मिलता है तो वो तो मतलब सच में दिल भर आता है. और ऐसा लगता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इतना सारा प्यार मिलता
0: हाँ
1: है.
0: मैं मतलब इस बात में बहुत बहुत

0: ज्यादा धनी हूँ कि
1: जी
0: मुझे इतने बच्चे हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि 32 ईयर्स की जर्नी में
1: जी
0: मुझे ऐसा लग रहा है शायद 5,000 से ज्यादा बच्चे होंगे जो मुझसे सीख करके
1: क्या
0: आगे
1: बात
0: निकले
1: है।
0: हैं।
1: जी,
0: कुछ बच्चे कथक फील्ड में ही आगे अपना करियर बना रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन चुके हैं,
1: जी
0: गायनिक है, उसके बावजूद भी वो कथक को अभी भी अडोप्ट किए हुए हैं। और वो मुझे बराबर टाइम टाइम पे कॉल करते हैं, बर्थडे है, कभी बर्थडे को याद नहीं रख पाते हैं वो लोग क्योंकि नेचुरली हॉस्पिटल
1: हो
0: में
1: जाता
0: बिजी
1: है। हाँ
0: होते हैं
1: जी,
0: ये
1: हाँ जी,
0: वो,
1: हाँ जी,
0: पर वो मुझे प्रेम इतना करते हैं कि मैसेज भेजेंगे और कभी जब भी जोधपुर आते हैं तो मिलने भी
1: मिलना
0: आते हैं
1: जरूर होता
0: बच्चे।
1: है। जी
0: और सबसे बड़ा ये लगता है ना कि मेरे साथ में जो भी लोग बाहर चल रहे हैं, सपोज हम एयरपोर्ट पे गए तो कोई ना कोई एयर होस्टेस मिलेगी, आके पैर छुएगी, ये सब देखते ये क्या हुआ। फिर मैं भी एक बार
1: जी
0: तो ओ तुम यहाँ पे, बोले हाँ मैम अब मेरे यहाँ पर जॉब चल रही है ये वो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो लोग एक ऊंचाई पे पहुंच गए
1: बिल्कुल
0: फिर
1: बिल्कुल।
0: भी मुझे भूले नहीं है वो, मतलब एकदम। अब जैसे मैं बच्चे को भूल जाती हूँ, छोटे बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, ध्यान नहीं रहता है कि
1: जी
0: अब कितने चेंजेस आते हैं, पर वो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मैम आप तो हमें डांस सिखाते थे ना। तो
1: हाँ
0: ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मतलब बहुत किस्मत वाली हूँ कि इतने बच्चे मुझसे प्यार करते हैं
1: जी,
0: और वो याद रखते हैं।
1: राय
0: नहीं
1: याद
0: तो आप
1: रखते
0: देखते हो
1: हैं
0: टीचर्स को इतना कोई बाद में नहीं याद रखता,
1: मैम।
0: डांस
1: ये
0: टीचर
1: टीचर
0: तो
1: का
0: मतलब
1: कहते हैं ना, अर्निंग यही है, जो इस प्रोफेशन में उनकी अर्निंग यही होती है कि उनके बच्चे वो कहीं भी हो, एक तो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और उन्हें याद करते हैं, और जब ये याद करते हैं वो मोमेंट मैम मेमोरेबल हो जाता है फॉर लाइफ टाइम। जी मैम, थोड़ा सा एक बार के लिए हम डांस को रोकेंगे, एक बार के लिए हम सारी बात रोकेंगे। मैं आपको वापस ले चलती हूँ आपके घर की तरफ, और वहाँ पे जैसे फैमिली के लिए आपका क्वालिटी टाइम रहता है, तो उसमें आप क्या क्या अपने परिवार के लिए करना पसंद करती हैं?
0: मेरी फैमिली की साइड भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं
1: जी
0: कितना भी बिजी रहूँ उनको तो मुझे देखना ही होता है, बिकॉज मेरे ओल्ड एज पेरेंट्स है, 86 ईयर्स ओल्ड फादर है मेरे,
1: ओके
0: और मेरी मम्मी है 80 ईयर्स ओल्ड, तो दोनों थोड़ा अब तो इस एज में मेडिकल इश्यूज भी बहुत है,
1: राइट राइट
0: पर फिर भी मैं जब वो मेरे पास होते हैं, वैसे वो गुजरात में रहते हैं
1: अच्छा,
0: पर गर्मियों के टाइम में वो मेरे पास आ जाते हैं, फिर यहाँ
1: जी
0: का विंटर उनसे नहीं सहन होता है
1: हाँ
0: तो वापस
1: हाँ
0: चले जाते हैं।
1: जी
0: उस टाइम में कभी कभी बहुत ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कैसे मैनेज करूंगी, मम्मा को हॉस्पिटल भी जाना है, क्लास भी करना है,
1: जी
0: कोई प्रोग्राम है तो उनके लिए कॉस्ट्यूम के लिए मिलने जाना है,
1: जी
0: लेकिन फिर भी मतलब मैनेज करती हूँ मैं। और आपको ये मतलब शायद काफी लोगों को पता है, पर मेरे पापा खुद बहुत अच्छे तबला प्लेयर रहे हुए हैं,
1: अच्छा,
0: शंकर जयकिशन जी के टाइम में वो तबला बजाते थे उनके
1: क्या
0: साथ
1: बात
0: में,
1: है, क्या बात है। जी
0: और मेरे क्लासिकल का जो भी मतलब मेरे अंदर ज्ञान है या उसके लिए जानने की जो उत्सुकता है ना, वो सब
1: जी
0: कुछ मेरे पापा से मुझ में आई है।
1: क्या बात है।
0: वो कथक
1: हाँ
0: मतलब बहुत अच्छा तबला बजाते हैं,
1: जी
0: क्लासिकल सॉन्ग्स बजाते थे वो पहले,
1: जी जी
0: और मेरे जितने भी मतलब सॉन्ग प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो सब पुराने पुराने गाने हैं
1: जी
0: जिसका कुछ मीनिंग होता है, और उस मीनिंग को मैं अब जैसे अब तो बड़े हो गए हैं तो उन चीजों को सोचते हैं दुनियादारी के साथ में जोड़
1: हाँ
0: करके,
1: जी
0: तो मुझे कुछ गाने तो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल वो हमारे लिए बने हैं।
1: जी
0: तो मेरे पापा से मुझे बहुत ज्यादा मतलब, आज इतने वो बीमार रहते हैं पर फिर भी उनका ये है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा रियाज करना है,
1: क्या
0: मतलब
1: बात है।
0: वो
1: हाँ
0: इतनी बीमारी में है फिर
1: जी
0: भी 15-15 मिनट वो तबला बजाते हैं,
1: क्या बात है, देखिए
0: वो
1: डेडिकेशन
0: बेड
1: जो
0: पे
1: है,
0: ही रख
1: बिल्कुल।
0: बेड पे ही रखते हैं तबला, 15 मिनट बजाएंगे फिर उनको एकदम से प्रॉब्लम होती है, कहीं लेट जाते तो
1: जी
0: उठेंगे फिर 15-20 मिनट बजाएंगे, तो वो तबला उनके साथ परमानेंट पड़े रहते हैं बेड पे, तो
1: जी
0: उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रैक्टिस तो कभी भी नहीं छोड़नी है चाहे
1: बिल्कुल
0: कितने भी
1: सही,
0: बड़े हो जाएं।
1: बिल्कुल सही। जो प्रैक्टिस की प्रेरणा है आपको पिताजी से मिली है मैम, और बहुत ही मतलब सुनकर अच्छा लगा कि ये जो डेडिकेशन है, ये जो आज आप जिस ऊंचाई पर हैं, तो ये जो डेडिकेशन, ये समर्पण, ये त्याग, और कहते ना ये संघर्ष, इन सब के बिना ये नहीं मिलता है। और जो सक्सेस है
0: बिल्कुल
1: वो ज़रूर दिखती है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो लोगों को कम दिखाई देती है। तो आपकी बातों से और आपने जो बताया उससे बहुत अच्छा लगा। मैम एक और बात दिल में आ रही है कि आप जिस फील्ड से हैं, तो इसमें क्या इनोवेटिव आइडिया एग्जीक्यूट करने की आपकी कोशिश रहती है बच्चों के साथ?
0: मेरा इनोवेटिव तो करते हैं, जैसे नए गाने हैं उनके साथ में कुछ चीजें करती हूँ,

0: मेरा ये है कि क्लासिकल चीज है, भगवान को किसी के साथ मिला नहीं सकते हैं,
1: राइट
0: ऐसे
1: हाँ
0: कथक को किसी भी गाने के साथ मिक्स करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है,
1: जी जी जी
0: क्योंकि मैं भी गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से हूँ, तो हमारे गुरु लोग तो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे कि
1: जी
0: फिल्मी गाने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन
1: बिल्कुल
0: अब आज की जो जनरेशन है उनको इंटरेस्ट ही तब आता है जब अगर कोई गाना सुनाते हैं, तो फिर मैं ये करती
1: बिल्कुल
0: हूँ कि
1: हाँ
0: कोई क्लासिकल सॉन्ग है उसमें उनको बोलती हूँ कि अच्छा चलो तुम्हें कौन सा मतलब फोक आ रहा है तो उसका ट्राई करो,
1: जी
0: और कोई फोक गाना बज रहा है तो मैं बोलती चलो इसमें क्लासिकल के फुटवर्क करके बताओ, फिर बच्चों को बड़ा मजा आता है।
1: मजा आता है
0: सपोज अपन राजस्थानी सॉन्ग ले लेते हैं, तो उसके साथ में उनको बोलती हूँ कि अभी आप अपना फुटवर्क करके बताओ, तो जो बच्चे थोड़ा ज्यादा अभ्यास कर चुके होते हैं 3 साल 4 साल का, वो सारे बिट्स को पकड़ के और उसमें वो बता देते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ अभी कल मुझे इसके बोल लिख करके लाना,
1: जी
0: तो फिर वो उसके साथ तबले के जो भी बोल सेट हो रहे होते हैं वो उनको करके लाते
1: करके
0: हैं।
1: लाते
0: तो
1: हैं
0: उस तरीके से क्या है, थोड़ा सा नयापन आता है और
1: नयापन
0: बच्चों को
1: आता
0: बहुत
1: है
0: मजा आता है।
1: जी
0: बाकी मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कथक जहाँ पर भी जाएंगे वो एकदम शुद्ध नृत्य हो,
1: जी
0: उसमें कहीं पे कुछ मिक्स ना हो।
1: मिलावट नहीं हो बिल्कुल मैम। आपने जी मैम आप कुछ कह रहे हैं।
0: जी
1: आपने जिक्र किया कि म्यूजिक का जैसे पुराने गीत जो हैं वो आप सुनते हैं, तो संडे में जो आपका कुछ हिस्सा ये गीत भी लेते हैं मैम ये म्यूजिक
0: हाँ, मैं म्यूजिक सुनती हूँ,
1: जी।
0: ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ, क्योंकि रेडियो में अचानक से जो सॉन्ग आते हैं ना
1: जी
0: वो एकदम मन को भा जाते हैं,
1: जी
0: और पुराने जो सॉन्ग आते हैं ये जय माला और ऐसे जो पुराने जो हम छोटे थे तब से सुनते आ
1: सुनते
0: रहे
1: आ
0: हैं,
1: रहे हैं बिल्कुल
0: ऐसी ऐसी
1: बिल्कुल
0: चीजें हम सुनते हैं,
1: जी
0: तो उसमें क्या गाने रेंडम जो चलते हैं, अदरवाइज अपना प्लेलिस्ट तो फिक्स है कि अभी नैन से नैन मिला चलेगा, अभी ये चलेगा,
1: जी
0: रेडियो सुनती हूँ उससे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर मुझे मेरी चॉइस से सुनना है तो
1: जी
0: मैं जरूर सुनती हूँ, मैं मुझे पाकिजा के गाने सारे बहुत अच्छे लगते हैं,
1: जी
0: और चित्रलेखा के सारे गाने अच्छे लगते हैं, जनक जनक पायल बाजे के सुनती
1: जी
0: हूँ मैं, बिल्कुल
1: आप
0: पूरा पूरा
1: सुनते
0: टाइम,
1: हैं
0: मतलब गाने चलते ही रहते हैं, बैक टू
1: जी
0: बैक बैक टू बैक, काम चल रहा है साथ साथ में गाने भी चल रहे हैं, फिर कभी
1: क्या
0: कभी
1: बात
0: ऐसा
1: है
0: गाना आ जाते हैं तो चलो छोड़ो थोड़ा सा नाच भी लेते हैं,
1: हाँ एंजॉय मतलब पूरा
0: तो
1: करते हैं उस गाने को पूरा अपने में उतार लेते हैं आप
0: हाँ बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, मतलब पुराने गाने तो मेरे को एक एक बीट्स उनका ऐसे
1: जी
0: ध्यान
1: जी
0: है कि
1: जी
0: अब
1: जी
0: ये बजेगा, अब ये गाना है, अब ये ऐसे होगा, ऐसे मुड़की लेंगे सारी चीज, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं।
1: सुनते आ
0: और
1: रहे
0: एक बहुत ही अमेजिंग चीज आपको पता चलेगी कि हमारे घर में
1: जी
0: पुराने टाइम में, मतलब जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो रेडियो और एक टेप रिकॉर्डर भी लेकर आए थे पापा, तो
1: अच्छा
0: उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि जैसे ही कोई दूसरे गाने आते हैं रेडियो बंद,
1: अच्छा
0: और कैसेट कभी भी हमारे घर में दूसरी सॉन्ग चले ही नहीं, क्लासिकल ही चले
1: क्लासिकल
0: थे,
1: ही
0: सुबह
1: चला जी
0: उठते ही पहले विष्णु सहस्त्र नाम शुभ लक्ष्मी जी उनका चलता था, उसके
1: जी जी जी
0: बाद भजन कीर्तन होते थे, क्योंकि हम लोग पुजारी हैं, हम द्वारका से मैं बिलोंग करती हूँ,
1: जी
0: द्वारकाधीश के पुजारी हम लोग, तो
1: जी
0: घर में पूजा का पूरा माहौल रहता
1: माहौल
0: है,
1: रहता है
0: तो सुबह ये सब होता है, और उसके बाद में तो मतलब आजकल इतना जो वेस्टर्नाइज चल हो गया है,
1: जी
0: और कथक वाले बच्चे भी करते हैं बहुत अच्छे वाले ये हिप हॉप और
1: फ्यूजन
0: ये सब भी,
1: हाँ जी
0: लेकिन हमको ये इन चीजों में बहुत पीछे है, हिप हॉप और ये नहीं आता है, और उसका मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है
1: राइट राइट
0: मुझे ये नहीं
1: सही है
0: आता है।
1: नहीं बिल्कुल सही है मैम। जो ओरिजिनल तो बेस्ट ही होता है, फ्यूजन और मिक्सिंग तो खैर अलग पार्ट हो जाते हैं मैम। श्रोताओं आपको बताएं कि हमारे साथ हैं अनुपमा वकील जी, आप क्लासिकल डांसर हैं, पिछले 32 सालों से आप इस फील्ड में हैं। मैम अब वक्त हो चला है जब आपने जो दिल के करीब गीत की बात कही कि आप ऐसे गीत सुनती हैं पाकीज़ा चित्रलेखा, तो कोई एक ऐसा गीत आप हमारे श्रोताओं को गुनगुना के बता दें जो आपके दिल के बहुत करीब है, और फिर उस गीत को हम भी सुनेंगे और हमारे श्रोता भी
0: मैम गाने में तो मैं बहुत बुरी हूँ गुनगुना सकती हूँ मैं खाली,
1: बिल्कुल मैम आप गुनगुना दीजिए।
0: और
1: हाँ
0: जो मैं
1: जी
0: गाना मेरा बहुत फेवरेट है
1: जी
0: तो मैं आपको बताऊंगी, उस गाने को अगर हम सुनेंगे उसके एक एक वर्ड में बहुत बड़े बड़े मीनिंग हैं उसके, और वो चित्रलेखा सॉन्ग से, चित्रलेखा मूवी से है
1: जी
0: गाना है, सॉरी मैं गाना तो बहुत गंदा गाऊंगी
1: कोई इश्यू नहीं मैम
0: वो है संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे,
1: क्या बात है। तो बिल्कुल अनुपमा जी, आपकी जो पसंद का गीत है, बिल्कुल आप और हम और हमारे श्रोता मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद।

0: का ये गीत आप फोन के माध्यम से हमसे जुड़े और बहुत अच्छी अच्छी आपने अपनी एक्सपीरियंस जो है हमसे शेयर किया, बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं 31 मई में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले अण्णा साहब किर्लोस्कर का जन्म 31 मई 1843 को बेलगांव जिले में हुआ था। संस्कृत कविता और नाटकों में रुचि रखने वाले विद्वान पिता के प्रभाव से बचपन से ही उनकी रुचि नाटकों की ओर हो गई थी। मराठी और संस्कृत की आरंभिक शिक्षा के बाद वे अंग्रेजी पढ़ने गए पूना और पढ़ाई के स्थान पर नाटक मंडली में सम्मिलित हो गए थे। अभिनय किया और नाटक भी लिखे। उनका लिखा हुआ श्री शंकराचार्य दिग्विजय पहला संगीत नाटक था श्रोताओं। बाद में उन्होंने राजपुताना के इतिहास पर नाटक लिखा और कालिदास की अमर रचना के आधार पर संगीत शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की थी। श्रोताओं आज के ही दिन में दर्ज है अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका कमला दास। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के त्रिचूर जिले के एक उच्च ब्राह्मण नायर परिवार में हुआ। बचपन से ही कविताएं लिखती थीं और इनकी माँ जो थी बालमणि अम्मा एक बहुत अच्छी कवयित्री थी श्रोताओं, और उनके लेखन का कमला दास पर खासा असर पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया।

श्रोताओं, आज के दिन में एक और शख्सियत हैं जो भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। जी हां, द्वारका प्रसाद मिश्र। इनका जन्म हुआ 5 अगस्त 1901 को और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। द्वारका प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। श्रोताओं, राष्ट्रवादी आंदोलनों में उन्होंने सक्रियता से अपना योगदान निभाया था। द्वारका प्रसाद मिश्र ने 1954 से 1964 तक सागर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपना जीवन जो है सेवाएं दी थी। उनके विद्या व्यसन के संबंध में कहा

जी हां श्रोताओं, संगीत जगत में अपनी आवाज से धमाल मचाने वाले कृष्ण कुमार कुन्नत यानी कि के आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने खूबसूरत गानों के जरिए वो लाखों फैंस के दिलों पर राज करते हैं। आज ही के दिन उन्होंने हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की थी। श्रोताओं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी आवाज दी थी जिसकी जो कहते ना धुन और शब्द आज भी हमारे दिलों में है। तो आज का नमस्कार यहीं तक दीजिए अनुमति नमस्कार की पूरी टीम को। फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चुनमुन।

गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और साथ ही हमें गर्मी से सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है, क्योंकि गर्मी से बचाव ही छुट्टियों का मज़ा बढ़ा सकता है। तो इस मज़े को और बढ़ाने के लिए मैं आपकी कामिनी दीदी आई हूँ आपके साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम चुनमुन में। आज करेंगे ढेर सारी बातें और सुनेंगे मज़ेदार गाने। तो शुरुआत करते हैं इस मजेदार गाने के साथ।

बच्चों, आज हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, जो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं तंबाकू होता क्या है? आइए जानते हैं। तंबाकू एक पौधा है जिसकी पत्तियों को सुखाकर विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। इसमें निकोटीन नामक एक नशीला पदार्थ होता है जिसकी आदत लग सकती है। तंबाकू का उपयोग कई रूप में किया जाता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा, हुक्का आदि में। बच्चों, तंबाकू हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे फेफड़े, हृदय और शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें खुद भी तंबाकू से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके नुकसान बताने चाहिए। तंबाकू सिर्फ खाने वाले या उपयोग करने वालों को ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो लोग इसके संपर्क में आते हैं, जैसे इसके धुएं को सांस के साथ लेते हैं, उन्हें भी नुकसान होता है। इसलिए धूम्रपान से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आज अपने परिवार और दोस्तों को तंबाकू के नुकसान के बारे में बताएंगे और स्वस्थ आदतें अपनाएंगे, खेलकूद, योग और पढ़ाई में समय लगाएंगे। तो बच्चों, आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।

बच्चों, अच्छी आदतें अपनाने का कोई दिन नहीं होता है। ये तो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि आपने कितनी अच्छी आदतें अपना रखी है। बच्चों, छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें बड़ा और सफल इंसान बनाती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, इससे दिन भर ताजगी रहती है और पढ़ाई में भी मन लगा रहता है। रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना, जिससे सीखना आसान हो जाता है। बड़ों का सम्मान करना और छोटों को प्यार देना। साफ सफाई रखना, जैसे हाथ धोना, नाखून काटना और अपने आसपास सफाई रखना, ये हमें बीमारियों से बचाती है। सच बोलना, अच्छी किताबें पढ़ना और हाँ, मोबाइल का उपयोग सीमित करना। तो याद रखिए बच्चों, अच्छी आदतें ही अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है।

बच्चों, हमने बात की थी अच्छी आदतों की। उनमें से एक आदत तो बड़े काम की है, वो है पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, एक पौधा और आप में समानता होती है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी

धूप और देखभाल चाहिए, वैसे ही बच्चों को प्यार, शिक्षा और अच्छे संस्कार चाहिए। बच्चों, मुझे एक कविता याद आ रही है जो मैंने अपने एक नन्हे दोस्त से सुनी थी, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। वो इस प्रकार है कि मैं भी नन्ना, पौधा भी नन्ना, दोनों बढ़ते धीरे धीरे। मुझको मिलता प्यार बड़ों का, पौधों को जल मिले सवेरे। मैं पढ़ लिख कर

सवेरे मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ता, पौधा बनता पेड़ घनेरा, हम दोनों का एक ही सपना, हरा भरा हो देश हमारा। तो बच्चों, इस गर्मी की छुट्टियों में एक पौधे को अपना मित्र बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे और उसे पानी दीजिएगा और उसकी देखभाल कीजिएगा और उसकी बढ़त को देखिए। आप और आपका पौधा दोनों साथ साथ बढ़ेंगे।

बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आप घर पर ही अपना छोटा सा बगीचा बना सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे। एक गमला या खाली डिब्बा लें, उसमें अच्छी और मुलायम मिट्टी भर लें। उसमें आप बीज या टहनी लगा सकते हैं। हल्का पानी डालें, धूप वाली जगह रखें और रोज देखभाल करें। बच्चों, कई फूल वाले पौधे हैं जो मई जून जैसी गर्मी में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं, जैसे मॉस रोज, सनफ्लावर, जीनिया, कॉसमॉस। और हाँ, ऐसे कई फूलों के पौधे हैं जो टहनी कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, बोगनवेलिया और सदाबहार। तो लगाने की विधि क्या रहेगी? आपको क्या करना है कि 5 से 8 इंच लंबी स्वस्थ टहनी लेनी है और 2-3 इंच गहरी मिट्टी में उसको लगा देना है और हल्का हल्का पानी देना है। उस समय गमले को 7 से 10 दिन तक छायादार जगह जरूर रखना है। बस आपका नन्ना पौधा तैयार हो जाएगा।

बच्चों, मौसम बहुत ही गर्म है, यानी गर्मी बहुत है, और आप अपनी छुट्टियों का आनंद तभी ले पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो आशा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, तेज़ धूप में खेलने से बचें, खूब पानी पिएं, ताज़े फल खाएं, हल्का भोजन करें, और हाँ, नई नई बातें सीखते रहें, किताबें पढ़ें, चित्र बनाएं, और कलात्मक या रचनात्मक काम करें, जैसे पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, वेस्ट से बेस्ट बनाना। आप चाहें तो संगीत या डांस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोडिंग या नई भाषा सीख सकते हैं, शतरंज और सुडोकू जैसे दिमागी खेल खेल सकते हैं। शाम के समय आप स्विमिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, योग या प्राणायाम जैसी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने परिवार के साथ समय बिताएं।

बच्चों आप ट्यून हैं अपने फेवरेट प्रोग्राम चुनमुन में आपकी कामिनी दीदी के साथ। फिर मिलेंगे नई बातें और नए गानों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनमुन, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनते हैं गैर फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा है के की आवाज़ में।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज़ में। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं सोनू कक्कड़ का गाया ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे शान और साथियों को। इस नगमे के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब

0: साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट, तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ, इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
11: नमस्कार सर। नमस्कार।
12: नमस्कार सर।
10: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है, एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
11: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।

0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
1: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
1: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
1: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10.1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस

0: भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी. एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कंपटीशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे.
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया. तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है. बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा.
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: तो हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे. तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं. जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा. तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं. तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं. तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा.
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, सम्बारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही

एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा,

वो दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत

छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई,
उसका इलाज

किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से

0: 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात शत मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शत मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्र प्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दर वीर सिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दर वीरः भवतेऽपि नमस्कारः।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम लोक संगीत की आखिरी पेशकश। इसको गाया है चंपा मेथी पार्टी ने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: चंपा मेहती पार्टी के गाइस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आप सुनेंगे गैर फिल्मी नगमे। पहली गज़ल आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसको गाया है चंदन दास ने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हरिहरन की गाई ये गज़ल। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से सुन रहे हैं आप सुगम संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता अंतराल से पहले आप सुन रहे थे मिताली सिंह की गाई गजल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की गाई ये गजल।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के इस मौसम में अपना ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसे नहीं भूलें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम की विभिन्न किस्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के आते ही आम हर घर में चर्चा का विषय होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के परंपरागत पेय पदार्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना झलकती है। राजस्थान में छाछ हर खाने की साथी होती है। मन की बात कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में देश की उपलब्धि से की। उन्होंने 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूरकी से भी बातचीत की। अपनी हाल ही की नीदरलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आयोजित एक समारोह में चोला काल की ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। केरलम में चलने वाले स्विमिंग क्लब के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें बड़ी सीख देता है कि सेवा करने के लिए अच्छा इरादा और लगातार प्रयास जरूरी है।
2: साजिद वलासेरी जी का जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में दो स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सवीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया जिससे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार

0: चार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से प्रस्तुत है कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाई ने दिनेश राणेजरा घनमानसू राम राम और नमस्कार सा किसान भाई आपा खेती बाड़ी रे काम काज करा हा साथे पशुपालन नो जिको काम काज है वो भी आप करा हा खेती करा तो कोशिश अपनी आ रहे है के भाई जितरो ही अपन उत्पादन हुयो है उन्हें आप बढ़िया सहजन रखा अनाज जी को है विनो भंडार कर रखा बीज जी को है विनो सुरक्षित कर रखा आज आपने जानकारी दा के भाई अनाज और बीजों रो सुरक्षित जी को भंडारण है वो आप किन तरह से कर सका। अनाज भंडारण मैंने किसान भाई आपने बहुत सावधानी रखनी पड़े और कह भी जाए की भाई 10% ताई जी को अपनो अनाज है उन मैंने कीड़ा है चूहा है मकड़ी है फंपूद है इन्हारे कारण वो जो को अनाज है खराब हो जाए करे। हम बात आवे की भंडारित अनाज है उन्हें कीटा सू की कर बचावा अनाज ने अपने साफ करना पड़े खलियान है साफ सुथरो होना चाहिए और उन्हें आड़ पाड़ घास फूस है झाड़ियां नहीं होनी चाहिए। अनाज रो जो गोदाम है या घर मैंने आप रखा तो पहला बढ़िया तरह आप साफ करा अनाज रे मैंने कटियोड़ा टूटियोड़ा दाना है तो उन्होंने छान अपने नहरा करना चाहिए। अनाज गोदाम में है या घर में है तो बढ़िया अच्छी तरह अपने सूखा पर और ठंडो करना अपने रखना चाहिए। हमें बात आवे कैसा भंडारण जी को उचित तरीको है और किन तरह से हो सके तो अनाज भंडवाली जी की बोरिया है या जी का पात्र है जिन्हें मैंने पर रखा तो साफ कर परो और धूप में मैंने सूखा परा और नमी जी की है वह 10-12% ताई अपन लेनी चाहिए और अनाज में मैंने किन्नी प्रकारों जी को कीटनाशक है औषधि अपन नहीं मिलानी चाहिए। चटे कमरा है या गोदाम रे मैंने लकड़ी का पट्टा है पॉलिथीन शीट पहला आप बिचावनी उनके बाद मैंने ऊपर अनाज जी की भरोड़ी बोरिया है वे आपने रखनी चाहिए। चटे कमरे में रखा या गोदाम रा जी का रोशनदान है या खिड़कियां जी की है वे बरसात में नहीं खोलनी चाहिए। खुले मौसम रे मैंने और ठंड दिनों मैंने आपने हवा देनी चाहिए और कमरा है गोदाम खुला है या बिक्रोड़ अनाज जी को है वो खुल्लो आपने नहीं छोड़ना चाहिए। बोरिया पुरानी काम में लेवा तो काम में लियो पहला मेला थियान 5% चून रो हड़को जी को भुरकाव है वो बोरिया में अपने करना चाहिए और किसान भैया चुहरी रोकथाम रे वास्ते जिंक फास्फाइड या वारफेरिन रो उपयोग जी को है अपने करना चाहिए। आपने जानकारी दे वहाँ हमें सुना आपने बढ़िया सी गीत रचना।

किसान भैया आपा जानकारी ले रहा था कि भाई अनाज और बीजा ने आपा सुरक्षित भंडारण किन तरह से कर सका। भंडार महीने कीटर प्रकोप रोकने वास्ते आपा कई कर सका, एक लीटर मेलाथियान 50 ईसी ने 100 लीटर पानी में घोल परा और 3 लीटर घोल ने प्रति 100 वर्ग मीटर दरू 15 दिन अंतराल माते गोदाम रिजी की दीवारा है या फर्श माते आपने छिड़काव करना चाहिए। बारदाना ने 0.3% डेल्टा मैथ्रीन रो छिड़काव बढ़िया तरह करन सुखाला आपा। इन रहता थे अनाज रमने कीड़ा लगने रे बाद में भी अपा रोकथाम राख सका, कई कर सका जिका कीटग्रस्त अनाज ने हवा में उड़ा परा और साफ करना और धूप रमने बढ़िया अच्छी तरह सुखाला। अनाज हल्ली मात्रा में इन्हें होए है तो उड़ाणु सुकाणु समूह नहीं हुए तो जिन अवस्था में वो पड़ियोड़ है वोटे अधिकृत पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरी देख रेख रहे महीने एल्युमिनियम फास्फाइड नु आपने धुमन करना चाहिए और गोदाम ने कम उकम 72 घंटा तक वायु निरोधक तारी अवस्था में राख परा और धुमन करना आपने चाहिए। अब बात आवे किसान भैया के भंडारण वास्ते जिको स्थान है उनरो जिको चुनाव है आपा किन तरह करा के स्थान जिको है वो आड़ पाड़े स्थान ऊंचो होना चाहिए, जट दीमक रो जिको प्रकोप है उठे भंडार गृह आपने नहीं बनाना चाहिए। भंडार गृह री सतह चिकनी और गड्ढा रीत होनी चाहिए। भंडार गृह री जिकी दीवारा है उन्हर मैंने किन बहादुरी दरारा नहीं होनी चाहिए क्योंकि दरारा मैंने कीड़ा रो जिको प्रजनन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होया करे। भंडार गृह री जिकी खिड़कियां है बंद रहनी चाहिए और छाया वाला स्थान माते होनी चाहिए। भंडार गृह री जिकी छत है छतरे मैंने भी दरारा नहीं होनी चाहिए, जिनू छतू आने वाली जी की नमी है वह रुकनी चाहिए और टाइम टाइम माते किसान भाई भंडार गृह जी की साफ सफाई है वह अपने करते रहना चाहिए। आ ही किसान भाई जानकारी के भाई अपा अनाज और बीजा रो सुरक्षित जी को भंडारण है वो किन तरह से रख सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है आपके साथी दिनेश राणे जाने शिख दिराओ। राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: सखी वो नहीं जो बस साथ नजर आए, सखी वो है जो खामोश भी समझ जाए।
1: खुशी में तो ये दुनिया संग चल देती है, सच्ची सखी वो है जो गम में भी साथ निभा जाए।
0: महिलाओं के इस खास कार्यक्रम नारी वाटिका में आपका स्वागत है। जीवन की भाग दौड़ में कुछ रिश्ते

0: जीवन की भाग दौड़ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे दिनों को मुस्कान से भर देते हैं और हमारी यादों को सजोते हैं।
1: ऐसे ही भावों और अनुभवों को लेकर आज आपके साथ हैं नेहा और
0: मकसूदन।
1: नमस्कार।

0: सखियों कुछ नाम समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों में खो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हंसी बरसों बाद भी कानों में गूंज जाती है। पुराने एल्बम का कोई फोटो, स्कूल की कोई बात या किसी गीत की कोई पंक्ति अचानक हमें बरसों पीछे ले जाती है।
1: तब याद आता है वह वक्त जब छोटी सी खुशी भी साझा होती थी, जब टिफिन का एक निवाला आधा आधा बांटकर खाया जाता था, जब मन की हर बात कहने के लिए खास मौके की जरूरत नहीं होती थी नेहा।
0: जीवन के इस सफर में कई लोग मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं, कुछ राहों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूरी और समय की सीमाओं से परे होकर भी मन के बहुत करीब बने रहते हैं।
1: कभी वो बचपन की शरारतों में मिलते हैं, कभी कामयाबी की रौनक में, और कभी हौसला बनकर, और कभी एक मीठी सी याद बनकर उनकी मौजूदगी जीवन के हर रंगों को खूबसूरती से भर देती है।
0: आज का हमारा कार्यक्रम ऐसे ही एक अनमोल रिश्ते को समर्पित है जो विश्वास से बनता है, अपनत्व से पनपता है और यादों में हमेशा जीवित रहता है।
1: तो सखियों, आइए कुछ पल ठहरें, कुछ पुरानी यादों को फिर से जिएं और बात करें उस खूबसूरत बंधन की जिसे हम स्नेह से सखी कहते हैं।

0: मकसदन, जब भी सखियों की बात होती है ना तो सबसे पहले बचपन की यादें मन में ताजा हो जाती हैं। बचपन की सखियों का रिश्ता सचमुच खास होता है।
1: बिल्कुल नेहा, बचपन की दोस्ती में ना कोई स्वार्थ होता है और ना कोई दिखावा, वहां केवल अपनापन, मासूमियत और साथ बिताए गए खूबसूरत पल होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। बचपन में हम स्कूल जाते थे, साथ बैठते थे, टिफिन बांटकर खाते थे और छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसते थे। उस समय शायद हमें एहसास भी नहीं होता था कि हम जीवन की कितनी अनमोल यादें बना रहे हैं।
1: और कई बार तो सखियां एक दूसरे के घर भी उतनी सहजता से आती जाती थी जैसे अपने ही घर में हो। किसी की माँ डांट दे तो दूसरी सखी की माँ समझा देती थी, है ना?
0: बिल्कुल, गांव में तो ये अपनापन और भी अधिक देखने को मिलता था। स्कूल से लौटने के बाद सखियां साथ में खेलती थी, रस्सी कूदती थी, सतोलिया खेलती थी और गुड्डी गुड्डियों का ब्याह भी रचाती थी और घंटों बातें करती थी।
1: और फिर त्योहारों का समय तो जैसे सखियों के लिए बहुत खास अवसर होता था। तीज के झूले हो, गणगौर के गीत हो या किसी विवाह का उत्सव, सखियां हर खुशी में साथ दिखाई देती थी।
0: मकसूदन, मुझे लगता है कि बचपन की सखियों की सबसे सुंदर बात तो ये होती है कि वो हमारी सबसे सरल और सच्चे रूप को जानती हैं। उन्हें ना हमारे पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से कोई मतलब नहीं होता है।
1: बिल्कुल, सालों बाद जब कोई बचपन की सखी मिलती है ना तो बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां कभी छूटी थी। समय बीत जाता है लेकिन अपनापन वही रहता है।
0: कई लोगों की जिंदगी में तो ऐसा भी होता है कि पढ़ाई, नौकरी या मतलब शादी हो जाती है ना, उसके कारण सखियां अलग अलग शहरों में चली जाती हैं, मिलना भी कम हो जाता है, लेकिन यादें हमेशा बनी रहती हैं।
1: सही कहा, कभी कोई पुरानी तस्वीर दिख जाए, कोई स्कूल का गीत सुनाई दे या कोई पुराना रास्ता दिखाई दे तो बचपन की सखियां बर बस याद आ जाती है।
0: बिल्कुल, एक चीज़ और है मकसूदन, हमारी लोक संस्कृति में भी बचपन की सखियों का ना बहुत वर्णन मिलता है। लोकगीतों में भी अक्सर सखियां साथ में खेलती, हंसती, सपने सजाती हुई दिखाई देती हैं।
1: यही कारण है कि जिंदगी में चाहे कितने नए रिश्ते क्यों ना बन जाए, बचपन की सखी का स्थान कोई भी नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल सखियों, यदि आपकी भी कोई ऐसी बचपन की सखी है ना जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो कभी समय निकालकर उसे याद जरूर करना। शायद आपकी एक छोटी सी बात उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान ला सकती है।
1: क्योंकि बचपन की सखियां केवल दोस्त नहीं होती, वे हमारी यादों, हमारे सपनों और हमारी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिनों में साथी होती
0: और
1: हैं।
0: यही कारण है कि बचपन की दोस्ती उम्र बढ़ने के साथ और भी अनमोल लगने लगती है।
1: सच कहा, बचपन के वे दिन भले फिर ना आए लेकिन उन दिनों को सखियां

0: मकसूदन, हमारी लोक संस्कृति में सखी का स्थान तो बहुत खास है। विशेष रूप से देखें ना तो लोकगीतों में सखी केवल एक पात्र नहीं होती है, बल्कि वो सुख दुख, हंसी खुशी, मन की बातों की सहभागी भी होती है।
1: बिल्कुल नेहा, लोकगीतों में ध्यान से सुने तो पाएंगे कि उनमें सखियां बार बार दिखाई देती है। कभी वो झूला झूल रही होती है, कभी तीज त्योहार मना रही होती है, और कभी अपनी सखी की मन की बात सुन रही होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। पुराने समय में महिलाओं के लिए लोकगीत केवल मनोरंजन का माध्यम तो नहीं थे, और अपने मन की भावनाओं को भी व्यक्त कर पाती थी वो। ऐसे में सखी का उल्लेख स्वाभाविक रूप से इन गीतों में हिस्सा बन गया।
1: और राजस्थान के लोकगीतों में तो सखियों का खास रूप से उसको दिखाई देता है। तीज है, गणगौर है, उसके अवसर पर सखियां एक साथ गीत गाती है, पूजा करती है और उत्सव का आनंद लेती है।
0: बिल्कुल, सावन के महीने में जब पेड़ों पर झूले पड़ते

0: हैं तब भी लोकगीतों में सखियों का उल्लास देखते ही बनता है। गीतों में तो वो एक दूसरे को बुलाती हैं और झूलती हैं, अपने मन की बातें भी एक दूसरे को बताती हैं।
1: और शादी शादी के गीतों में तो सखियों की भूमिका बहुत ही खास होती है। दुल्हन की सखियां उसके साथ हंसती है, उसके साथ सजती है, संवरती है, और विदाई के समय वो थोड़ी भावुक भी हो जाती है।
0: वो तो है, कई लोकगीतों में सखी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हो जाती है, नायिका का संदेश लेकर जाती है, कभी कभी उसकी मन की बात भी इधर उधर बताती है जहां बताने के लिए वो भेजती है, मन की बात समझती है। इसलिए लोकगीतों में सखी को विश्वास पात्र और सबसे निकट का साथी माना गया है।
1: और राधा कृष्ण से जुड़े लोकगीतों को देखें तो वहां भी सखियों का खास महत्व दिखाई देता है। कई गीतों में सखियां राधा और कृष्ण के बीच संदेशवाहक बनती है और उनकी भावनाओं की भी वो साक्षी होती है।
0: बिल्कुल, ब्रज के लोकगीतों में अगर देखें ना, तो सखियां कभी राधा को चिढ़ाती हैं, कभी उनकी सहायता करती हैं, और कभी उनके मन की स्थिति को भी समझती हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय लोक परंपरा में सखी का रिश्ता कितना गहरा, कितना आत्मीय है।
1: लोकगीतों की एक और विशेषता ये भी है कि वह हमारे समाज की जीवन शैली, रिश्तों की झलक भी दिखाती है। उनमें सखी केवल खास दोस्त नहीं, बल्कि जीवन के हर खास अवसर की सहभागी होती है।
0: चाहे खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले गीत हों, सावन के झूलों के गीत हों, या कोई शादी के मंगल गीत, हर जगह सखियों की हंसी और अपनापन सुनाई देता है।
1: यही तो कारण है कि लोकगीतों में सखी का जो चरित्र है सदियों से जीवित है और आज भी उतना ही प्रिय है।
0: तो सखियों, लोकगीत केवल सुर और शब्द नहीं होते, वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे रिश्तों की अमूल्य धरोहर हैं। उनमें सखी का उल्लेख हमें मित्रता की मिठास और अपनापन याद दिलाता है।
1: जब भी कोई लोकगीत सुने तो उसमें छिपी सखियों की हंसी, उनकी बातें और उनके प्रेम को महसूस करना ना भूले, शायद यही लोकगीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

0: मकसूदन सखी का रिश्ता केवल हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय साहित्य और कथाओं में भी इसका बहुत खास स्थान है। सदियों से कवियों, लेखकों और लोक कथाकारों ने सखी को एक बहुत ही जरूरी पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है।
1: बिल्कुल नेहा, हम साहित्य को ध्यान से देखें ना तो पाएंगे कि सखी केवल मित्र नहीं होती, बल्कि वे नायिका की विश्वास पात्र, सलाहकार और सुख दुख की सहभागी भी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। भारतीय काव्य परंपरा में सखी को अक्सर वो व्यक्ति माना जाता है जो नायिका के मन की बात को बिना कही समझ लेती है। जब नायिका किसी खुशी या चिंता में होती है तो सबसे पहले अपनी सखी से ही मन की बात साझा करती है।
1: यही तो कारण है कि अनेक कविताओं और कथाओं में सखी का पात्र बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कई बार वो केवल बात को सुनने वाली नहीं, बात को समझकर और मार्गदर्शन को सही देने वाली है।
0: पुराने समय में जब परिवार और समाज के बहुत सारे नियम होते थे ना, तो सखी वो इंसान होती थी जिसे नायिका के मन की हर बात कही जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे नियम होते थे ना, वो अपनी बात अपने घर वालों को, बड़ों को कह नहीं पाती थी, झिझक होती थी, तो वो अपनी सखी को कह दिया करती थी। तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए साहित्य में सखी को मन का दर्पण भी कहा गया है।
1: और संत साहित्य में भी सखी शब्द का विशेष महत्व है। कई संत कवियों ने सखी का प्रयोग आत्म संबोधन के रूप में किया। ये केवल मित्रता नहीं, बल्कि निकटता और विश्वास का भाव भी व्यक्त करता है।
0: वास्तव में साहित्य और कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची सखी वो होती है जो केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ी हो।
1: शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी साहित्य में सखी का जो पात्र है आज भी उतना ही जीवंत और प्रिय लगता है।
0: सखियों, हमारी कथाओं और साहित्य में सखी का जो सुंदर चित्रण मिलता है, वो हमें मित्रता, विश्वास और साथ निभाने का बहुत महत्व सिखाता है।
1: इसलिए तो कहा जा सकता है कि सखी केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य व संस्कृति की एक अनमोल पहचान है।

0: Come on boys, let's go practice.
1: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया.
0: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना.
1: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं.
2: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो.
3: रुक मैं समझाता हूँ. जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन. RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं. ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री. RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: मकसूदन, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें. ऐसे में अक्सर सबसे पहले याद आती है अपनी सखी की.
5: बिल्कुल, क्योंकि सखी केवल हमारी बात सुनने वाली नहीं होती, बल्कि हमें सही और गलत का अंतर समझाने वाली भी होती है. कई बार उसकी छोटी सी सलाह भी प्रॉब्लम दूर कर देती है.
4: जब मन उलझनों से घिरा होता है और भावनाओं में बहकर हम है ना डिसीजन लेने लग जाते हैं कुछ भी, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है कि क्या करना है.
5: मन शांत नहीं होता है ना,
4: तो ऐसे समय में ना सखी हमें शांत होकर सोचने की प्रेरणा भी देती है.
5: खास बात यह है कि सखी की सलाह केवल बड़े मामलों तक सीमित नहीं होती. कभी पढ़ाई की चिंता हो, कभी घर की जिम्मेदारी हो, या कभी किसी नए काम की शुरुआत, सखी हर सिचुएशन में साथ खड़ी दिखाई देती है.
4: मुझे लगता है कि सच्ची सखी वो होती है जो हमेशा हमारी हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमारी गलती भी बताए, जैसे तुम मेरी बताती रहती हो.
5: बिल्कुल, जो मित्र केवल तारीफ करे वह अच्छा लग सकता है, लेकिन जो मित्र सही समय पर सच कहे वही वास्तव में हमारा हितकारी होता है.
4: हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि अच्छे मित्र की सलाह जीवन का मार्ग बदल सकती है. कई बार हम जिस समस्या को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं, सखी उसे एक अलग ही दृष्टिकोण से देखकर ना सरल बना देती है.
5: ये सलाह केवल शब्दों में नहीं होती, कई बार सखी का सब्र, उसका यकीन और उसका साथ ही सबसे बड़ी सलाह बन जाता है.
4: जब कोई कहे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आधी परेशानी तो वैसे ही कम हो जाती है.
5: और आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है,

0: तब ऐसे रिश्तों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जिससे वो खुलकर अपने दिल की बात कह सके।
1: लेकिन एक बात ना और भी जरूरी है, सलाह तो तभी काम की होती है जब खुले मन से कोई उसे सुने। कभी कभी हमारी सखी हमें वो बात समझाती है, बताती है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें जो लगता है ना कि ये सही है तो हम उसे ही मानना चाहते हैं, उसकी बात हम मानना ही नहीं चाहते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो वो
0: सच्ची।
1: बात हमारे लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन हम सुनते नहीं है।
0: हाँ, लेकिन सच्ची मित्रता का अर्थ केवल साथ हंसना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करना है।
1: बिल्कुल। आपके जीवन में भी कोई ऐसी सखी है जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती है? सखियों, आपकी चिंता करती है और आपको सही राह दिखाने का प्रयास करती है, तो उसको ना आप रेस्पेक्ट दें, उसकी बात आप सुनें, उसकी बात आप समझें।
0: क्योंकि जीवन की राह में अच्छी सलाह लेने वाली देने वाली सखियां अनमोल धरोहर से कम नहीं होती, वो हमारे जीवन का अनमोल खजाना होती है।
1: और याद रखिए सखी की सलाह केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं होती है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा देती हैं।
0: सखियों, मित्रता का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें अपनापन हो, विश्वास भी हो और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना भी हो।

0: मकसूदन, जब हम सखी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी सहेली की छवि उभरती है, लेकिन क्या सखी का रिश्ता केवल मित्रता तक ही सीमित है?
1: नहीं, मेरा तो मानना है कि सखी वो होती है जिसके सामने हम अपने मन की बात बिना किसी झिझक के कह सकें, जैसे तुम और मैं। ऐसा अपनापन हमें केवल सहेली में ही नहीं, कई रिश्तों में मिलता है, जैसे हमारी सखियाँ जो ये प्रोग्राम सुन रही है।
0: बिल्कुल, कई बार माँ ही हमारी पहली सखी बन जाती है। बचपन में वो हमें चलना सिखाती है और बड़े

0: होने पर जीवन की राहों पर संभल कर चलना भी सिखाती है। जब मन उदास होता है तो उसकी दो बातें ही दिल को सुकून दे देती हैं।
1: सही कहा, उम्र बढ़ने के साथ माँ केवल मार्गदर्शक नहीं रहती, बल्कि ऐसी साथी बन जाती है जिससे हम अपनी चिंताएं, खुशियां और अपने सपने भी साझा कर सकते हैं। बहन का रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही होता है। बचपन में खिलौनों को लेकर झगड़ा, कपड़ों को लेकर नोकझोंक, और बाद में वो ही सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है।
0: हाँ, बहन वो होती है जो हमारी कई बातें बिना कहे ही समझ जाती है। चाहे दूरी कितनी भी हो जाए, उसके साथ बात करते ही अपनापन लौट आता है। कई लोगों के लिए भाभी, ननद, देवरानी या जेठानी की सखी का रूप बन जाती है। रिश्तों की पहचान केवल नाम से ही नहीं होती है, बल्कि उनमें बसे स्नेह और विश्वास से होती है।
1: कभी पड़ोस की कोई दीदी, कभी साथ काम करने वाली कोई साथी, तो कभी परिवार का कोई सदस्य भी जीवन में सखी जैसा स्थान बना लेता है।
0: दरअसल सखी वो नहीं है जो केवल हमारे साथ हंसे, बल्कि वो है जो हमारे मन की आवाज़ सुन सके, हमारी खुशी में खुश हो, और मुश्किल समय जब आता है तो वो हमारा सहारा बन सके।
1: ऐसे रिश्ते जीवन को और भी सुंदर बना देते हैं, क्योंकि जब किसी रिश्ते में मित्रता से हम जोड़ते हैं ना, तो उसमें अपनापन और भी बढ़ जाता है।
0: इसलिए सखियों, अपने आसपास के उन रिश्तों को पहचानिए जिनमें आपको एक सखी का साथ मिलता है। हो सकता है कि आपकी माँ हो, आपकी बहन हो या कोई और अपना।
1: क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर एहसास यही है कि कोई ऐसा हो जिससे हम बिना किसी डर और संकोच के अपनी मन की बात कह सकें।
0: सच ही कहा गया है, रिश्तों की पहचान नामों से नहीं होती। कुछ लोग माँ होकर भी सखी बन जाते हैं, कुछ बहन होकर भी हमराज बन जाते हैं।
1: यही रिश्ते जीवन को अपना अपनेपन, भरोसे और मुस्कान से भर देते हैं।

0: मकसदन समय बदलता है, जीवन शैली बदलती है, लोगों के रहने और काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो हर दौर में अपनी अहमियत बनाए रखता है।
1: वह सखी का रिश्ता। पहले सखियां रोज मिलती थी, साथ ही स्कूल जाती थी, पड़ोस में रहती थी और शाम को चौपाल और आंगन पे घंटों बातें करती थी। लेकिन आज का समय किसी के पास वक्त ही नहीं है।
0: बिल्कुल, आज बहुत सी सखियां अलग अलग शहरों में, राज्यों में, अलग अलग देशों में भी रहती हैं, कई बार बहुत दूर भी चली जाती हैं। पढ़ाई, नौकरी और शादी की जिम्मेदारियों के कारण उनकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाती है।
1: फिर भी मित्रता तो बनी रहती है। पहले हालचाल जानने के लिए मिलने का इंतजार रहता था, लेकिन आज एक संदेश, एक फोन कॉल, एक और वीडियो कॉल से हम दूरियों को काफी हद तक मिटा सके हैं।
0: बिल्कुल, तकनीक ने तो है ना फ्रेंड्स को एकदम पास में कर ही दिया है, लेकिन भावनाओं को नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं, जब सखी का संदेश आता है तो हमें चेहरे पर मुस्कान तो आ जाती है, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि उसके साथ क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं।
1: कई बार ऐसा भी तो होता है कि महीनों बात ना हो, लेकिन जब बातचीत शुरू होती है ना, तो लगता है जैसे कल ही मुलाकात हुई थी। और ऐसे में सखियों का साथ बहुत खास हो जाता है। वे केवल हंसी मजाक की साथी नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे को मोटिवेट भी करती है। कभी किसी को परीक्षा की तैयारी को लेकर, कभी किसी काम की शुरुआत को लेकर, हमेशा मनोबल बढ़ाती है।
0: बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई बार ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो समय निकालना बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और ऐसे रिश्तों को समय देना और स्नेह की आवश्यकता होती है।
1: सही कहा। कभी कभी एक छोटा सा संदेश, जन्मदिन की शुभकामनाएं या यूं ही हालचाल पूछना भी बेहद जरूरी होता है।
0: और अभी के समय में देखिए ना, तो सखी केवल हमारी यादों का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान का, हमारे भविष्य का भी हमारे साथ है।
1: वो हमारे संघर्षों की भी साक्षी होती है और हमारी उपलब्धियों की भी, और कई बार हमारे हमारी प्रेरणा भी बन जाती है।
0: बिल्कुल, कितना भी समय क्यों ना बदल जाए, सखी का जो महत्व होता है ना, वो कभी कम नहीं होता। ऐसी ही मित्रता जीवन को ज्यादा सुंदर, सरल और आनंदमय बना देती है।

0: सखियों जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन हर कोई सखी तो नहीं बन जाता। ऐसे में सच्ची सखी की पहचान क्या होती है, वो जानना बहुत जरूरी है।
1: बहुत सुंदर सवाल है। सच्ची सखी की पहचान इस बात से होती है कि वह हमारे साथ कितना समय बिताती है, बल्कि इस बात से होती है कि वह हमारे जीवन में कितना अपनापन और विश्वास हमारे साथ जोड़े रखती है।
0: सच्ची सखी वो होती है जिसके सामने हम बिना किसी दिखावे के अपने मन की बात कह सकें, जिसके सामने हम खुद को बदलने की हमें जरूरत ना पड़े।
1: और साथ में ये भी है कि ये ऐसा ना हो कि वो सिर्फ हमारे साथ खुशियों में ही शामिल हो, हमारा कोई कठिन समय हो, कोई मुश्किल समय हो, उसमें भी हमारे साथ खड़ी रहे।
0: कई बार सच्ची सखी की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है, और हमारी सफलता से वो ईर्ष्या ना करे बल्कि दिल से खुश हो।
1: सच्ची सखी कभी हमारी कमजोरियों का मजाक नहीं बनाती, वह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आगे बढ़ने को भी हमें मोटिवेट करती है। आज के समय में मित्र तो बनाना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन है।

0: सखियों, आज के कार्यक्रम में हमने एक अनमोल रिश्ते की बात की। वो रिश्ता है सखी का रिश्ता। और आज हम ये बताना चाहेंगे कि सखी के नाम एक संदेश अपनी सखी को ज़रूर दीजिएगा। और वो संदेश कुछ इस तरह लिखना, प्रिय सखी, जीवन की भाग दौड़ में बहुत से लोग मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी अनमोल बन जाते हैं। तुम भी मेरे जीवन का एक ऐसा ही सुंदर हिस्सा हो। तुम्हारे साथ बिताए हुए हंसी के पल, छोटी छोटी बातें और सुख दुख की साझेदारी आज भी मेरे मन को मुस्कुराने का कारण बताती है। सच्ची सखी वही होती है जो बिना कहे मन की बात को समझ ले। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी यादों की पोटली में एक अनमोल मोती की तरह सजा हुआ है। ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में सुख, सफलता, स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियाँ बनी रहे। ये जो संदेश है ना सखियों, ये आपके लिए भी है, और आप भी अपनी सखियों को ज़रूर दें।
1: और ऐसा ही एक संदेश बिछड़ी हुई सखी के नाम। पता नहीं आज तुम कहाँ हो, कैसी हो और जीवन की किन राहों में चल रही हो। समय ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, लेकिन तुम्हारी यादें आज भी मेरे मन में वैसी ही बसी हुई है। जब भी बचपन के दिन याद आते हैं ना, तो तुम्हारी हंसी, हमारी बातें, साथ देखे गए सपने और वो छोटी छोटी शरारतें आँखों के सामने तैरने लगती है। जीवन ने हमें अलग दिशाओं में भले ही भेज दिया हो, लेकिन दोस्ती की वो गर्माहट आज भी वैसी ही महसूस होती है। शायद हम कभी मिलें और शायद ना मिलें, लेकिन तुम्हारी दोस्ती मेरी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा हमेशा रहेगी। जहाँ भी हो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और जीवन में खूब आगे बढ़ो। कुछ लोग जीवन में हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन हमेशा याद में बसे रह जाते हैं।

0: सखियों, देखते ही देखते आज की ये बातचीत अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। इन पलों में हमने उन यादों को छुआ जो शायद कहीं मन के किसी कोने में चुपचाप बसी हुई थी।
1: हो सकता है आज की इस बातचीत को सुनते हुए आपको भी अपनी कोई सखी याद आई हो। शायद वह आपके पास हो, शायद आपसे बहुत दूर हो, शायद बरसों से उससे बात भी ना हुई हो।
0: अगर ऐसा है तो आज उसे अपने मन की बात भेज दीजिएगा। अपनी बात से उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दीजिएगा।
1: फिर मिलेंगे नए विषय, नई बातों और नए यादों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने रिश्तों में मिठास सहज कर रखिए।
0: आज के कार्यक्रम में कंट्रोल रूम से राइसिंग राव, HPT से सुनील जयपाल, प्रेम किशोर सेन, FM से दिलीप सिंह परमार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास

कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है

0: समझौता करीब चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर

0: रणवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने

0: दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूरी नगरी चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथी फिल्म से। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हमराज से। गीतकार है सैयद लुधियानवी, संगीतकार है रवि और इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है?

0: मिठाई।
1: RBI कहता है
2: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं तकदीर फिल्म से ये गीत। इसको गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आई श्रोता हूँ, अब आपको सुनवाते हैं अमराज फिल्म से ये गीत। गीतकार है शाहिर लुधियानवी, संगीतकार है रवि, और इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आइए आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी का लिखा ये गीत। संगीत है नौशाद का। इस गीत को गाया है आशा भोसले और साथियों ने। फिल्म है राम और श्याम।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं शागिर्द फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये पहली प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 530 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इस सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: ये बात तो किसी ने बड़ी ही सच बोली है कि जिस दिन हम एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद छोड़ देते हैं उस दिन कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, कल हमने देखा ही था हमारे शहर में, जब हमने ये सोच ही लिया था कि गर्मी तो कहीं नहीं जा रही, इसी के साथ जीना पड़ेगा, तब जो आंधी और बारिश आई है उसने जो सुकून दिया है पिछले 2 दिन से, तो उसका तो क्या ही कहना है। एक तो हमारा शहर वैसे ही खूबसूरत है, उसके बाद जो ये बादल बारिश इन्होंने जो खेल खेला है, भाई साहब मज़ा ही आ गया। अभी तो हम आ चुके हैं आप ही का कार्यक्रम युवाणी लेकर, अभी जुड़ी है आपके साथ दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि।
1: जी हाँ, मैं हूँ आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश 102.1 पे। आप युवाणी इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हो। और यदि आज है 31 मई, पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड नो टबैको डे। तंबाकू से दूरी, स्वस्थ जीवन और एक मजबूत कदम बढ़ाने वाला दिन।
0: ये तो है ही है नितेश। देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग सारे ही शहर बेहद खूबसूरत हैं, पर इस खूबसूरती पे जब तंबाकू के नाम पे उसे गंदा कर दिया जाता
1: दाग
0: है,
1: लग जाते
0: दाग
1: तंबाकू।
0: लग जाते हैं, दाग तो किसी भी चीज़ पे लगा हुआ सुंदर नहीं लगता, तो कभी कभी दुख होता है कि इसे खाने से नुकसान भी होता है और जो शहर की खूबसूरती है उस पर तो असर पड़ता ही है। और भारत में तो ये देखने को हर जगह मिल जाता है, भले ही चाहे जगह कितनी सुंदर हो, लोगों को उसकी परवाह नहीं रहती। तो आज का हमारा जो बात करने का विषय है, वैसे तो संडे है, सभी लोग जानते हैं कि आज ढेर सारी बातें होने वाली है आप सभी के साथ, तो आज हमारा विषय भी यही रहने वाला है कि अगर आपने किसी से तंबाकू छुड़ाया है या फिर ऐसा कभी हुआ कि आप भी इसके एडिक्टिव थे और आपने छोड़ा है, तो आप ज़रूर से इसकी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज इस पे एक विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे, पर ये शो में आगे आगे जुड़

0: तो श्रोताओं, जैसा कि आज हम जानते हैं कि दिन है संडे का, और संडे के दिन आप सभी से ढेर सारी बातचीत होती है, जिसके लिए नंबर आपको बता देती हूँ, वो है 02912553300, और दूसरा नंबर है 2554300। लेकिन बात करने से पहले आप सुनेंगे एक इंटरव्यू जो कि है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर अमन चौधरी तोड़ा भीम करौली से नितेश की फ़ोन आउट बातचीत, जिसकी प्रस्तुति की है राजेश लामरन ने। तो आइए सुनते हैं ये इंटरव्यू।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे नितेश। दोस्तों, हर साल 31 मई को पूरी दुनिया विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाती है। तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सेहत और जिंदगी के लिए खतरा है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने जागरूकता, संवाद और जन सहभागिता के माध्यम से 5,000 से भी अधिक लोगों को तम्बाकू की लत से मुक्ति दिलाने

0: में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे बीच मौजूद है एसडीएम श्री अमन चौधरी जी। सर, युववाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आकाशवाणी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि मैं नागौर जिले से आता हूं और मेरी स्कूलिंग राजस्थान से हुई है ग्रेजुएशन। उसके बाद 2007 से 2022 के बीच में भारतीय वायुसेना में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत था और वहां के बाद में मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन किया था और अभी वर्तमान में करौली जिले में टोडा भीम उपखंड में वहां का एसडीएम हूं मैं।
0: जी सर, तो मतलब काफी लंबी जर्नी रही है। आपने पहले एयरफोर्स की तैयारी की, फिर एसडीएम बने, और फिर एक अभियान चलाया जिससे एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया कि 5,000 से भी अधिक लोगों को आपने तंबाकू छुड़ा दिया। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है।
1: देखो, पहली चीज तो है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो तंबाकू है उसके हानिकारक जितने भी प्रभाव है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना और उसका जितना भी उपभोग जो हो रहा है उसको कम करना। तो इसके लिए सरकारों को भी निर्देश होता है कि इनकी नीति बनाना, क्योंकि अपने भारत की काफी बड़ी जनसंख्या है जो इसको तंबाकू का अलग अलग रूप में सेवन करती है और हर साल लगभग 13.5 लाख के आसपास लोग मरते हैं। तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है और राजस्थान जो है इसमें भी काफी ऐसी संख्या है जो जो मैं भारत का एवरेज है उस एवरेज से हम ऊपर है। लगभग अपना 41% के आसपास है लोग जो इसका सेवन करते हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे का उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं इसके प्रति जागरूक रहे।
0: सर, आपने 5,000 से अधिक लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआती चुनौतियां क्या थी?
1: शुरुआत देखो, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मेरे स्कूलिंग डेज हम देखते थे कि ग्रामीण जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठते थे तो बैठने का एक इनका होता था कि जहाँ पे बैठेंगे वो बीड़ी पियेंगे। और जहाँ पे भी आज भी होता है कि जहाँ पे किसी की मृत्यु होती है लोग बैठे होती है तो वहां पे, और जितने भी धूम्रपान है बीड़ी सिगरेट उनका और तम्बाकू काफी ज्यादा सेवन होता है। मुझे बचपन से भी इस चीज से थोड़ी सी नफरत भी थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नुकसान होता है। शुरुआत तो काफी लोगों को मना भी करता था और 1 जुलाई 1999 को हुई थी जब मैं स्कूल जा रहा था कि पहले दिन ही मेरा बर्थडे आता है तो मेरे पिताजी भी किसान थे, उन्होंने बोला था कि हाँ, हालांकि वैसे तो उस टाइम केक कटिंग ऐसा तो कुछ होता नहीं था, बोला तेरे को क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि आप कुछ नहीं दे सकते। मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ऐसे थी कि जो वो बीड़ी का सेवन करते थे वो अच्छी बात नहीं थी, तो मैंने कहा आप रहने दो, आप कुछ दे नहीं सकते। तो उनका ईगो थोड़ा और हर्ट हो गया, क्या बोला ऐसा कौन सी चीज है। मैंने कहा आप रहने दो, आप दे ही नहीं सकते। उन्होंने बोला नहीं, तो जो मांगे दे दूंगा। और उन्होंने बोला होगा कि बच्चा क्या मांगेगा, साइकिल मांग लेगा, उस टाइम साइकिल बड़ी बात होती थी। तो मैंने कहा कहा नहीं, तू जो बोलेगा वही दूंगा, मेरे मेरा वादा है। तो मैंने मम्मी के सामने करो, मैंने बोला कि आपके पॉकेट में जो बीड़ी का बंडल है वो निकाल के दे दो और आज के बाद आपको बीड़ी नहीं पीनी है, ये दे सकते हो तो मुझे दे दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, आप दे नहीं सकते। ये उस दिन की शुरुआत थी जब मैंने ये देखा कि उनके भी विल पावर इतनी थी तो उन्होंने 1 मिनट का समय लिया और वहीं डाल के और तोड़ के सीधे बोला चला आज के बाद नहीं पियेंगे। उसके बाद 2023 तक 23 साल जिंदा रहे तो उन्होंने कभी नहीं पिया। और मेरे लिए एक मोटिवेशन की बात थी कि जब घर से शुरुआत है, ठीक है, तो घर में एक दाऊजी भी थे उनको कुछ छुड़वाई थी, तो ऐसे कई लोग थे वहां से शुरुआत हुई। और जहां मुझे दिखते थे एयरफोर्स में भी थे कई लोग ऐसे थे जो चेन स्मोकर्स थे, ड्रिंकिंग के एडीएस थे, डिपेंडेंट सिंड्रोम थे, तो चलता रहा। जहाँ लोग मिलते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, अधिकतर लोग छोड़ते हैं। और ये कि अगर डिसाइड कर लेते हैं इसको छुड़वाना है तो कई बार आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन लोग छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद खुश होते हैं। हाँ, इसमें एक ये चीज है कि जितने भी तंबाकू इनका उत्पादों का उपयोग करते हैं वो सब ये चीज मानते हैं कि ये गलत बात, सब लोग 100% मानते हैं ये गलत बात है, तो उनको इमोशनली टेकल करना पड़ता है, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, आपको थोड़ा सा फीडबैक करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर लोग छोड़ देते हैं और उनके लिए पॉजिटिव स्टोरीज भी आती है, बहुत सारी आती है। वहां से शुरुआत हुई थी और ये चल रही है, लगभग 25-26 साल हो गए मुझे इस पे काम करते हुए। और ऐसे बहुत सारे और भी युवा हैं जिनको हम कहते हैं और अलग अलग कार्यक्रम में इसकी प्रचार करते हैं, लोगों को छुटवाते हैं और लोग खुश भी होते हैं, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है।
0: जी, क्या बात है। मुझे घर से शुरुआत की और घर से जो मोटिवेशन मिला उसको आपने 5,000 लोगों तक पहुंचा दिया। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने एक वो चीज अचीव की जो मतलब करना बहुत ही मुश्किल होता है, आदतें बदलना और तंबाकू जैसी आदतों से उन्हें बचाना। तो जब कोई व्यक्ति वर्षों पुरानी तंबाकू आदत में होता है और जब आदत वो छोड़ता है तो उसके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव आते हैं और जो आपने देखे हैं खुद ने?
1: तो मैं देखो आपको किसी का भी अगर एग्जाम एग्जाम्पल लूँ तो मैं एक बार पिछले साल की बात है, मैं ट्रेन

0: रहा था रूम में, मेरी दोल पोस्टिंग हुई थी, मैं वहां जा रहा था, एक आर्मी का कोई जवान था ऐसे मुझे सामने दिख गया था। तो उसने क्या है कि बड़े संजीदा तरीके से, उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, ऐसे पूछा था कि मैं खा लूंगा। तो शरीफ इंसान था, उसने पूछा मेरे से कि मैं खा लूंगा, तो मैंने कहा बोले क्यों खाना, तो उसने बोला कि मुझे आदत है। तो वहां क्या है कि इमोशनल एंगल काम आता है, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि बताओ कि आपकी वाइफ खाती है क्या, तो 100% लगभग का ये सवाल आता है कि नहीं खाती है। मैं उनको बोलता हूँ आपके बच्चे खाते हैं क्या, बोला नहीं खाते। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि आपके बच्चे आपके सामने खाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, उनका मुझे बहुत खराब लगेगा। मैंने कहा जितना आपको खराब लगेगा कि आपके वाइफ या बच्चे खाएंगे, उतना उनको हर रोज बुरा लगता है आपके खाने से। लोग कहते हैं कि साहब हम उनको शायद पता नहीं है। मैंने कहा कि सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी कि आप कहते हो मैं बाहर स्मोकिंग कर लेता हूँ, कुछ चबा के चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, उनको 100% पता होता है और इमोशनली हर रोज सफर करते हैं, ऐसे आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसको खाओ। तो इस कारण लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि जिस दिन आप 1 महीना हो जाएगा मुझे जरूर फोन करना, मैं आपके पास आऊंगा, चाय पीने घर पे आऊंगा आपके पास। तो उनको क्या खुशी होती है कि इस चीज के लिए भी कि ठीक है मैंने प्रॉमिस किया है तो इसको निभाऊंगा। दूसरा सिर्फ उस प्रॉमिस को वहां तक नहीं रखते हैं, मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि घर परिवार में किसी से बात करता हूँ ताकि वो उनको मॉनिटर करे कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा। क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली 1 वीक बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के लिए भी। आप ये देखो कि जिसको 20 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत से छुटकारा पाना मानसिक रूप से उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ती है, उसको बहुत बड़ी विल पावर की जरूरत पड़ती है। उस विल पावर को सपोर्ट करने के लिए हर रोज उसको घर से, या तो उसके वाइफ हो, उसके बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई ना कोई उसके दोस्त हो जो उसको मोटिवेट करे। मैं ये कोशिश करता हूँ हर इंसान को जिनको शपथ दिलाया, जिनको छुड़वाया है, उसके घर से कांटेक्ट करके उसको मॉनिटर करे और मुझे हर रोज कम से कम ये मैसेज करे, बताएं हर हफ्ते में इसे छुड़ा कि नहीं छोड़ा। कुछ लोग वापस चालू कर देते हैं, उनको वापस फिर से मोटिवेट करते हैं। तो अधिकतर लोगों में सक्सेस रेट अच्छी होती है। मैं कल ही आपको बता देता हूँ, कल बाजार में गया था ऐसे खाने के लिए, तो एक मेडिकल स्टोर पे मैं मेडिसिन का पूछ रहा था, तो मुझे कोई मिला था, बोला सर मेरे को 4.5 महीने हो गए मुझे गुटखा छोड़े। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बोला मैं 4.5 महीने हो गए आज के बाद, अभी तक मैंने नहीं खाया। तो ऐसे कई सारे स्टोरीज है, और छोड़ने के बाद उनके लिए एक मेंटली और परिवार के लिए बहुत ही अच्छी सकारात्मक न्यूज होती है।
1: सर, आप एक SDM अधिकारी है, आपके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे दायित्व होते हैं कि आपको जनता के जनकल्याण के लिए, उनके लिए, उनको सारी चीजों से वाकिफ कराना, और उस बीच आप लोगों से कैसे मिलते हैं, उनसे कैसे फॉलोअप लेते हैं और तंबाकू नहीं खाना चाहिए और उनको ऐसी प्रेरणा देते हैं, तो ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे करते हैं?
0: देखो, अगर आपने देखा होगा कि 3 मई का दिन नियम आया था सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन,
1: जी
0: उसमें पब्लिक ऑफिसर्स की ये ड्यूटी है कि एक तो जहाँ तंबाकू बिकता है वहां पे 18 वर्ष से कम के जितने भी नाबालिग हो उनको नहीं बेचना चाहिए, और शिक्षण संस्थाएं उनके 100 यार्ड के बीच में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पे पाबंदी है, और इन पे ऐसे जो लोग पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते हैं इनके करते हैं उनके ऊपर आपको 200 रुपए तक का चालान करने की, ये सरकार के हिसाब से हर पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी है। अब अगर हम उसकी बात करें कि इसके हिसाब से क्या करना है, तो मुझे जब भी कोई सामने दिखता है अगर उसके मुंह में गुटखा हो कुछ होता है, उसकी बात को या उसके प्रॉब्लम को तो बाद में सुनता हूँ, उसको पहले बोलता हूँ कि भाई आप पहले ये कहो, इसको थूक के आओ, खुला करके आओ, इस पे बात करेंगे 5 मिनट, फिर आपके प्रॉब्लम का 100% समाधान करेंगे। तो एक तो क्या है कि उसका एडवांटेज होता है, क्या होता है कि आप अधिकारी बैठा है वो कुछ कह रहा था, उसकी बात को तवज्जो दी जाती है, उसको सुना जाता है। मैं अपने कोर्ट में बैठता हूँ, कई सारे परिवादी आते हैं, वो क्या है कि वो मोटिवेट करते हैं इस कई कारण, मेरे कारण सुन लेते हैं, उसके आसपास लोग होते हैं उनके कारण सुन लेते हैं, सोशल मीडिया के कारण सुन लेते हैं, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलता है और उनके विल पावर को स्ट्रोंग करने का थोड़ा सा जरिया मिलता है, तो इस पद का भी फायदा मिलता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे ऑफिस में पहले, मैं जिस एरिया में हूँ वहां पे लगभग 40% लोग जो गुटखा उटका खाते हैं, और पहले हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ गुटखा खा के आता था ऑफिस प्रमाइसिस में, कई सारे कर्मचारी वो भी खाते थे। आज ये है कि लगभग नहीं के बराबर कोई नहीं आता 5 महीने के अंदर, कोई मुश्किल से गलती से आ गया तो मेरे ड्रॉअर में अभी कई सारी पुड़िया रखी हुई है, मैं उनसे लेके यहाँ रख लेता हूँ।
1: तो सर, आप अपने अधिकारी की जो ड्यूटी है, जिसका दायित्व है, आप 100% निभा रहे हैं, और आपकी बातचीत में हमारे श्रोताओं को भी पता चल रहा है, और वही साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आज के युवाओं में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और जो इन दिनों ट्रेंडिंग में चल रहा है वैपिंग का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्या होता है जो आजकल के युवा है वो बड़ी पर्सनैलिटी से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप भी एक अधिकारी, एक बड़ी पर्सनैलिटी है। एक तरफ आप लोगों को तंबाकू से दूर रख रहे हैं, और एक तरफ जो दूसरी जो बड़ी पर्सनैलिटी है जिससे आज का जो यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?

0: हमारे श्रोताओं को?
1: श्रोताओं का मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो क्या है कि ये इन जो नया नशा करने की है, वेपिंग है या फिर और भी ड्रग्स है, इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इनका जो प्रचार होता है उनसे हमें बहुत लगता है कि ऐसी तादाद बहुत ज्यादा है। इससे लोग तो कम होते हैं बट इनका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एक तो इनका जो पीयर ग्रुप होता है वो एक रीजन है, कॉलेज का ग्रुप है या इनका वर्किंग है, जैसे आईटी प्रोफेशनल है कई जगह बैठते हैं साथ में, तो इन लोगों के पीयर ग्रुप के कारण ये लोग इन्फ्लुएंस में आते हैं और एक्सपेक्टेशन के रूप में देखते हैं कि हाँ ठीक है, हम अच्छा लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनको क्या है कि किसी भी लेवल पे, मैं ये कहना चाहूँ कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्रैक्टिकल वे में इनके बारे में सही ढंग से सिखाने की हमें जरूरत है। इन चीजों के नुकसान क्या क्या है, इनसे खुद के बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, इनसे फैमिली पे क्या फर्क पड़ेगा, इनसे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इनकी कहीं

0: इनसे फैमिली पे क्या फर्क पड़ेगा, इनसे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इनकी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की अभी कमी है। लगभग जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं इनके आदी होते हैं, उनको ये तो पता है गलत है, लेकिन कितना गलत है, कितना फर्क पड़ रहा है इनका। अधिकतर लोग इतने कहते हैं इकोनॉमिकल वे में या ज्यादा खर्च होता है, इसके बजाय इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, इनका मेडिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ऐसी ऐसी बीमारियों या कैंसरस है प्रोडक्ट जितने भी मैक्सिमम सबके साथ है। अगर सही ढंग से इनका इम्प्लीमेंट किया जाए तो 100% जितने प्रोडक्ट है वो इम्प्लीमेंट से बैन हो जाने। लेकिन एक इनका मेरा जितने भी नए युवा है उनको मैसेज है मैं देना चाहूंगा कि ये चीज जो है आपको सोशल इम्पैक्ट या रील्स के लिए आप बनाते हो, या आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इससे सोशल इम्पैक्ट इतने हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी आजकल गर्ल्स है महिलाएं हैं वो भी इसके इम्पैक्ट में आ रही है। इनको पीसीओएस हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, और बॉयज है इनकी फर्टिलिटी भी कमजोर हो रही है, इन सब के कारण हो रही है। ये
1: जी
0: अभी इनको पता नहीं चल रहा है, बट आने वाले टाइम में जब ये 30-35 करोड़ का जाते हैं, इनके बाद इनको पता चलेगा। इनके स्टेमिना कम हो जाता है, इनके पास
1: जी
0: इनकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी खराब हो जाती है। अब आज आप ये देखो कि धीरे धीरे करके अभी बैंगलोर या कहीं के एक दो एग्जाम्पल आ रहे, एक जॉम्बी ड्रग होता है उसके कारण कई कई घंटों में उसी पोजिशन पे रहता है आदमी, सो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। देखो एक इसके पीछे गैंग और चलती है, मैं तो ये मानता हूँ। इनको बेचने वाली कंपनियां या जो गलत धंधा करते हैं वो लोग एग्रेसिव कैंपेन करके पहले लोगों को खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बिजनेस चले। इन चीजों से इन युवाओं को थोड़ा समझने की जरूरत है, इन लोगों से दूर रहे और पुलिस और प्रशासन की मदद करे। अगर आपके एरिया में कोई भी अगर ऐसा है कि जो गलत रूप से नशा या ये ड्रग्स बेच रहा है, उनकी मदद करे ताकि हम उनको थोड़ा सा उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।
1: और ऐसा भी सर देखा गया है कि जब छोटी जगह से कोई युवा बड़े शहरों में जाता है काम की तलाश में या फिर वो वहाँ नौकरी करता है, तो जब वो उनके नाइट आउट कल्चर से जुड़ जाते हैं या फिर वहाँ के जो नए दोस्त बनते हैं वो बोलते हैं यार एक दो बार से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ट्राई तो कर ट्राई तो कर, तो ऐसी चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखो ये जो पहले छोटी छोटे शहर से जब बड़े जाते हैं तो उनको जो चकाचौंध दिखती है उनको ये लगता है कि यही लाइफ है, तो आप उस लाइफ को जीने का तरीका अलग हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं भी कई जगह ऐसे जहाँ बैठा हूँ यार ऐसे लोग करते थे, मेरे पास भी बड़े शहरों में गए हूँ तो ऐसे लोग आए थे, लेकिन है कि मैंने ये कोशिश की इन चीजों से दूर रहने की। पहले चीज तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि इनका नुकसान क्या है। दूसरा, ऐसे दोस्त अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे तो कोशिश करो कि उनको भी इनसे दूर करने की कोशिश करो। वो नहीं हो रहे तो कम से कम आपको स्ट्रैप में नहीं आना है। आप 2-4 दिन के चक्कर में ऐसे आदि हो जाओगे और उसके कारण आपके जीवन बर्बाद हो रहा है, घर परिवार वालों का बर्बाद हो रहा है, तो वो एक शहरी क्षेत्र का जीवन यापन करने का तरीका नहीं है, बट ये बर्बादी के रास्ते पे जाने का एक तरीका है। इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को इससे अवेयर करें।
1: बिल्कुल। और सर हाल ही में आरएस का रिजल्ट आया है, काफी युवा विद्यार्थी है वो अधिकारी की पोस्टों पर उनका चयन हुआ है, तो उनका दायित्व है कि गुड गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर का अपने जो भी आपको उपखंड मिलता है जो भी आपको ब्लॉक मिलता है वहां पे आप वो सारी सेवाएं प्रदान करें। और उसके साथ साथ ऐसे जो कैंपेन होते हैं ऐसे जो अभियान होते हैं जैसे तंबाकू छुड़ाने का पर्यावरण के लिए, तो ये सारी चीजें एक अधिकारी के लिए क्यों जरूरी है? आप उन सभी जो नए ट्रेनी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: ट्रेनिंग के लिए भी मैसेज होगा, अपनी अच्छी ट्रेनिंग करें और जो सरकार ने भी योजनाएं हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए उनको धरातल पे अच्छी तरह वहां पे उतारने की कोशिश करें ताकि आम जो नागरिक है भारत का उसको उनका फायदा मिले, चाहे वो नशे के खिलाफ हो या पर्यावरण के लिए हो, चाहे आपको ट्रैफिक नियमों के लिए किसी को जागरूकता हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। उससे भी ज्यादा मैं मानता हूँ कि ऑफिसर्स तो करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, साथ साथ में हमारे समाज के ऐसे वॉलंटियर्स है, ऐसे हुआ है, ऐसे कई सारे सोसाइटी तो इन पर काम करती है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन। जैसे राजस्थान को अगर आप देखोगे, राजस्थान को WHO ने भी सम्मानित किया था कि हमने लगभग एक साथ 8% की गिरावट की थी जितने भी ये नशा तंबाकू सेवन कर रहे थे उनमें, तो ये एक बड़ा जंप था। इतने लोगों ने इनके लिए राष्ट्रीय तंबाकू की हेल्पलाइन भी जारी कर रखी है, कई सारे ऐसे ऐप भी है, कई सारे लगभग हर ब्लॉक में नशा मुक्ति केंद्र भी खुल रहे हैं। तो अपने आसपास जो समाज के युवा है या अधिकारी है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आसपास के ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करो जो इतने आदी हो चुके हैं कि वो अपने खुद के मेंटल कंट्रोल में नहीं है कि इसी से बाहर आ सके। ऐसे लोगों को काउंसलिंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू या फिर नशा मुक्ति केंद्र के थ्रू, आप उनके थ्रू उनको नशा छुड़ाने की कोशिश करें और आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, हमारे समाज को, हमारे देश को बचाएं। इससे खुद को भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, ये आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है जो इनसे दूर जा रही है, जो हमारा एक समाज है वो एक सभ्य बन रहा है, जागरूक बन रहा है, ताकि हम अपने

0: समाज और अपने देश की प्रगति में योगदान दे सके।
1: सर, आप स्कूलों कॉलेजों में युवाओं के बीच लगातार संवाद करते हैं, तो युवाओं की प्रतिक्रिया कैसी रहती है उस वक्त?
0: आजकल लगभग 80% युवाओं की प्रतिक्रिया तो बहुत सकारात्मक है, अगर आप देखोगे वो ये मानते हैं। लेकिन ये कि सोशल मीडिया में सिर्फ 5-7% युवा है, प्रॉब्लम ये है कि जो सकारात्मक है जो लोग हैं उनका प्रचार नहीं होता, बट जो नकारात्मक है 2-4% उनका प्रचार ज्यादा होता है, उनकी ज्यादा रीले बनती है। तो जो हमें है कि सकारात्मकता का या फिर जो लोग इनको छोड़ने कर रहे हैं उनका भी प्रचार करने की जरूरतें होगी। इनका जो है नुकसान क्या होता है इसके बारे में हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो भी कई तरह कैंपेन चलाते रहता है। हम सबको मिलके थोड़ा सा इस चीज का प्रचार करना पड़ेगा। आसपास है, मैं तो कह रहा हूँ आप अपने घर में शपथ ले लो कि मेरे घर में तंबाकू का सेवन नहीं होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो अधिकतर, और अपने आसपास पड़ोस मेरे परिवार में होने नहीं दो। इस लड़ाई में अगर इतने लोग शामिल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज के दिन जो राजस्थान में लगभग 39 से 40% के आसपास लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, वो 20% से कम आ जाएंगे, और आने वाले टाइम में इनको हम टैकल कर ले। हर साल अपने जन्मदिन पे वैवाहिक वर्षगांठ पे आपको शपथ लेनी चाहिए कि मैं आने वाले टाइम में 5 ऐसे लोगों को कम से कम तंबाकू की लत से छुड़वा दूंगा, तो डेफिनेटली हमारे समाज में और राजस्थान में अच्छा काम हो जाएगा।
1: सर, आपके अनुसार भारत को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रशासन, समाज और युवाओं को मिलकर क्या कदम उठाना चाहिए?
0: एक तो अवैध रूप से जितना भी बन रहा है बिक रहा है, इसमें सरकार की पॉलिसी और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो, पूरा प्रशासन एक साथ मिलकर काम करें कि जहां पे भी अवैध रूप से बिक रहा है, और समाज युवा ये मिलके भी प्रशासन का सहयोग करें और खुद भी इस चीज में लग जाए। 10 युवा अगर एक साथ आ जाए तो मेरी गारंटी है उस एरिया में गलत ड्रग्स नहीं बिक सकता। बेचने वाले लोग कम होते हैं, उनके पास कई तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पावर्स होती है, लेकिन 10-15 युवा अगर एक साथ आ जाए, मेरे एरिया में हर जगह ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनी हुई है जिसमें 10 युवा एक साथ लगते हैं और वो कहते हैं साहब हमारे एरिया में हम अच्छा काम करेंगे, कर रहे हैं। मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। तो ऐसे अगर धीरे धीरे जागरूक होंगे तो अपने आप इनका प्रभाव कम हो जाएगा। इनको प्रचार ना करें, जो लोग हैं उनको सजा के बजाय उनको काउंसलिंग करें, परिवार में समझाएं, उसको धीरे धीरे इस लत से बाहर निकालें। एकदम से निकलना मुश्किल होता है, बट कंटिन्यूअसली काउंसलिंग और उनके माध्यम से डिफरेंटली निकल सकते हैं ये लोग।
1: अमन जी, आपने 5,000 से अधिक लोगों को तंबाकू छुड़वाने के सफर में आपकी जो सबसे बड़ी सीख है वो क्या रही?
0: मेरी सबसे बड़ी सीख ये कि किसी भी इंसान को अगर इंसान होने के लिए अगर आपको कोशिश करना है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। मैंने 10 साल का युवा है वो भी छोड़े हैं, और 75 साल के बुजुर्ग उन्होंने भी तंबाकू छोड़ा है। तो जो आदत चाहे वो 5 साल की पुरानी हो चाहे 25 साल की है, अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हो और उनके भले के लिए काम कर रहे हो तो आप जरूर सफल होते हो, चाहे तंबाकू छुड़वाना हो, चाहे सिगरेट छुड़वानी हो, चाहे किसी परिवार को एक साथ चलाना हो।
1: जी सर, बिल्कुल सही कहा। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आप युवाओं और हमारे प्यारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं इनको कहना चाहूंगा खुश रहो हमेशा, और अपने आसपास के समाज में जो गलत चीजें होती है अगर तंबाकू का सेवन हो रहा है तो उनको प्यार से सही ढंग से कानून के तरीके से उनको बंद कराने की कोशिश करें, अपने आसपास के माहौल को सुचारू रूप से अच्छा बनाएं ताकि हम अपने आसपास के आपका मोहल्ला आपका गांव आपका समाज शहर इस चीज से तंबाकू मुक्त हो सके। हमारा भारत देश में जितने भी हर साल इतने मौतें हैं वो कम हो जाए और हम किसी न किसी परिवार के चिरागों को बचा सके। थैंक यू सो मच। और आकाशवाणी के श्रोताओं को ऐसे ही आकाशवाणी है और बाकी लोग भी हैं ऐसे प्रचार करते रहे ताकि जो 5,000 की संख्या है वो अधिकतर अधिक से अधिक बढ़े, और आप लोग अगर सभी साथ रहेंगे तो फिर इस संख्या का नहीं हमारे लिए ये रहेगा कि हमारे पास आज 1 से 2% ही, आज जैसे हम 40% की बात करते हैं 40% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वो 4% से आने वाले टाइम में उससे भी कम हो जाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से तंबाकू के दुष्प्रभावों तथा इससे मुक्ति के उपायों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। दोस्तों, कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ, ऐसी शख्सियत हमारे साथ और भी जुड़ती रहेगी। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो खुद से जीत जाता है वही असली विजेता कहलाता है। तंबाकू को छोड़ जो जीवन अपनाता है वही स्वस्थ भविष्य को बनाता है। इसी संदेश के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त नीतीश, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू को हमेशा के लिए ना कहिए। थैंक यू वेरी मच सर।
0: थैंक यू सो मच सतीश, थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी वर्ल्ड नो टोबैको डे पर अमन चौधरी SDM टोडा भीम करौली से नितेश की फोन आउट बातचीत, जिसकी प्रस्तुति की थी राजेश लामरू ने। तो दोस्तों, अभी जैसा कि हमने सुना है इस इंटरव्यू में

कि जो तंबाकू है वो हमारी सेहत के लिए भी कितना नुकसानदायक होता है, और अब इसकी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम ये भी देखते हैं कि पहले तो बड़े बुजुर्ग खाते दिखते थे, पर अब टेंशन की चीज़ ये हो गई है कि बच्चे भी तंबाकू का सेवन करने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं इसके हेल्थ के इम्पैक्ट लेटर लाइफ में दिखने लगेंगे। तो अब ऐसा क्या है कि यंगस्टर्स में या तो जो फियर था वो ख़त्म हो गया, या फिर सिर्फ शोबाजी के लिए उखा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ढूंढने में सब लोग लगे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके परिवार में कोई तंबाकू का सेवन करता है और आपने इस आदत को उनसे अलग किया है, उनको तंबाकू से मुक्त किया है, तो आप इस कहानी को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसे टिप्स हो या फिर ऐसे कोई नुस्खे हो जिससे ये एडिक्शन छूट जाए, क्योंकि क्या होता है कि तंबाकू एक एडिक्टिव चीज़ है जिसको छोड़ने में टाइम लगता है, और इससे शरीर को कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी होती है, तो ये लंबा प्रोसेस है। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें तो ज़रूर से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर है 02912553300, दूसरा नंबर है 2554300, और हिंदी में बताएं तो ये नंबर है 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300। तो जल्दी से फ़ोन घुमाइए, हाल फिलहाल इन्जॉय कीजिए ये वाले गाने।

0: श्रोताओं, इसी के बीच हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: नाम राजेश है, भोपालगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: हाँ तो राजेश जी, बताइए, आपने आजकल सुना होगा टॉपिक हमारा।
1: हाँ जी,
0: जी जी बताइए, आपके क्या विचार है?
1: पर मैडम, जो आज हमारे परिवार में तो किसी प्रकार का जो भी लोग नशा करते वो बिल्कुल नहीं करते। हाँ
0: अच्छा,
1: जी बिल्कुल।
0: तो पहले पहले करते थे, मतलब आपने उनसे ये लत छुड़वाई
1: नहीं
0: है?
1: मैडम, पीढ़ी से नहीं कर रहे हमारे, तो 2-3 पीढ़ी हो गई।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये काफी अच्छी चीज
1: बिल्कुल
0: है कि
1: सेम
0: अगर
1: मैम,
0: आपके घर में कोई भी इसे यूज नहीं करता तो ये काफी अच्छी
1: कोई भी
0: सराहनीय
1: परिवार
0: चीज है।
1: वाले कोई भी सदस्य नहीं करते।
0: तो ये तो कहीं ऐसा होता होगा ना कि बचपन से सिखाया गया होगा कि ये चीज हानिकारक होती है, इसे दूर रहना है।
1: जी मैडम, हमारे परिवार में कोई भी नशा नहीं करते, एक भी बच्चा।
0: क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी चीज है, और ऐसे ही आगे आपके आने वाली जनरेशन
1: और
0: इस
1: जी
0: चीज को
1: मैडम,
0: फॉलो करे।
1: जोधपुर का मौसम कैसा है आपका?
0: अरे बहुत ही बढ़िया सर, कल बारिश हुई थी, आज फिर धूप आ गई, लेकिन उम्मीद होगी कि वापस बेटर हो जाए।
1: जी मैडम।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर।

इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं नितेश और रिद्धि के साथ। और रिद्धि बहुत ही शानदार अरिजीत सिंह की आवाज़ में वालम सुना है हम सब ने, और वाकई मौसम भी बहुत सुहाना होता जा रहा है। और जो आज का ये फ़ोन इन प्रोग्राम स्पेशल संडे स्पेशल चल रहा है, उसे आप इंजॉय कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड नो टबैको डे पे आपको हमारे साथ बात करनी है। अगर आपके परिवार में कोई नशा करता है और आपने किसी का नशा छुड़वा

0: गया है, तो ये आज का प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए है। तो बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, एक नंबर बता रहा हूँ मैं आपको हमारे स्टूडियो का, उस नंबर को आपको डायल करना है और सीधे युवानी प्रोग्राम में आप होंगे लाइव, और वो नंबर है 02912553300। और यदि जो दूसरे नंबर है वो है
1: 2554300। तो दोस्तों, जहाँ पर बात होती है नशे की, तो नशा होना चाहिए खुशी का, प्यार का। ऐसे जो नशे होते हैं ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी आप जाओ तो हर सिचुएशन में अगर आपने कहीं खुशी ढूंढ ली, अगर आपने आपके अंदर एक छोटा सा स्पार्क है जो हर जगह खुशियाँ ढूंढता हो, पॉजिटिविटी ढूंढता हो, तो ये भाई ये नशे होते हैं जो आप शरीर में लाइए और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। पर ये जो नशे हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर वालों को तकलीफ़ देते हैं और उसी के साथ आपके शहर, आपके देश को भी नुकसान पहुँचाते हैं, तो इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और आगे जाकर ये बहुत डेंजरस डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और हम सभी जानते हैं, तो इससे दूर रहिए। और अगर आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से हमें कॉल कीजिए। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से मौसम में एंजॉय करते हैं ये प्यारे प्यारे गाने।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: श्रोताओं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप एंजॉय करें ओनली ऑन 102.1 पे नितेश और रिद्धि के साथ। और रिद्धि, वीकेंड्स की बात करें तो कल सैटरडे खत्म हुआ, आज संडे भी लगभग खत्म होने वाला है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई इस वीकेंड्स किसी के साथ कुछ फनी चीजें ना हो।
6: यार नितेश, फनी तो कल एक इंसिडेंट हुआ था। मैं ट्रैवल कर रही थी और उसी दौरान ये जो सायरन की आवाज़ आई थी, जो अलर्ट आया था फ़ोन पे, तो हुआ ऐसा था कि जहाँ मैं थी वहाँ पर आसपास बहुत सारे अनजान लोग थे और एक साथ सबके फ़ोन बजने शुरू हो गए। तो वहाँ पर ये बताया, हम राजस्थानियों की खासियत है कि कोई भी अलर्ट वाली सिचुएशन आई या फिर कोई एकदम ऐसे डेंजरस सिचुएशन भी आ गई ना, अब कल कैसे आंधी आई थी और कितना तेज़ तूफान आया था, तो बहुत लोगों को ना इससे ठंडक और अच्छा लगा। वो जैसे ही अलर्ट आया था तो बहुत सारे लोग आसपास थे और सब हंसने लग गए, वही हंसी का माहौल बन गया कि सबके फोन बज रहे और वो इतनी तेज आवाज आ रही है। तो लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं की थी कि उस अलर्ट में क्या लिखा है, क्या मेंशन किया। वहां पर लोग आपस में ये गॉसिप कर रहे थे कि थारो ही फोन बाजी हो गई। तो ये वाली जो चीज थी मुझे बहुत फनी लगी कि लोग कैसे हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कहाँ पर जैसी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि लोगों को अलर्ट होना चाहिए या फिर सीरियस मोड में जाना चाहिए, वहीं पर हमारे राजस्थान के लोग एकदम चिल होके बस हर एनवायरनमेंट में, हर माहौल में खुद को ढाल लेने की वो कोशिश कर लेते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ का नशा है, जो खुशी और जो ह्यूमर हर चीज़ में ऐड करना, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेना, इसमें तो हम लोग भाई एक्सपर्ट है। पर आज बात हो रही है वर्ल्ड नो टबैको डे पर, और ये थोड़ी डेंजरस चीज़ है, ये सीरियस मुद्दा है, ये हंसने की बात नहीं है और इस पर जोक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखें तो तंबाकू के चलते बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि इससे होने वाले डिजीज़ बहुत डेंजरस होते हैं। कैंसर तो सबसे बड़ा इसका रीज़न है। तो ये जो मुद्दा है इसे सीरियसली लेना चाहिए, और अगर आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको भी तंबाकू की लत लग चुकी है और अगर आप इसे छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो ज़रूर से इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आप तो खतरे में हैं ही पर आगे आने वाले समय में आपके परिवार को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर आप उनसे प्यार हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं और मेरा परिवार दोनों स्वस्थ रहने चाहिए, तो इस लत से दूर हो जाइए। हाल फिलहाल संडे का दिन है और शाम का टाइम हो चुका है और मौसम भी थोड़ा सा बेटर तो हो ही गया है, तो आप हो सकता है चाय कॉफ़ी के साथ थोड़ा सा नमकीन भी इंजॉय कर लेना, पर अच्छे गाने तो हम आपको सुना ही रहे हैं, तो यस, इट्स अ गुड कॉम्बो ऑफ अ गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला ट्रैक।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो श्रोताओं, आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, जहां पर बात हो रही है आज वर्ल्ड नो टबैको डे पर। और ये जो विषय है थोड़ा सा गंभीर है, और इसी बीच में मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि जैसे कि हमने बात की थी अभी मोबाइल अलर्ट्स की, तो इसे सीरियसली लेना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमने कल देखा है कि शहर में आंधी के साथ कितने पेड़ गिरे हैं, कितने होर्डिंग्स गिरे हैं, तो बहुत से

0: लोगों को ये होता है कि एंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकल गए कि चलो अच्छी हवा चली है, अच्छा मौसम है, कहीं बाहर घूम कर आना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खुद का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अच्छा मौसम आप घर पर बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, अपनों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पर जो नेचुरल कलामिटी होती है या फिर नेचुरल चीज़ों से जो चीज़ हो जाती है, बस हैपन हो जाती है कि पेड़ गिर गया, होर्डिंग गिर गई, ये किसी के हाथ में या बस में चीज़ नहीं होती। पर अगर इससे आपको कोई नुकसान पहुँचता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो आप अपना ख्याल रखिए, और साथ ही में ये जो वार्निंग्स आती है ये तो अब पता बढ़िया भाई, ये सारी सीरियस वार्निंग्स है, क्योंकि जितनी बार भी आई है उस वक्त बहुत तेज़ तूफान आया है। तो येस, यू नीड टू टेक दिस वार्निंग्स एज अ हाई टाइम। तो ये चीज़ जो है आज इस पर डिस्कशन चल रहा है कि नो टोबैको डे। तो नितेश, आपने भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ये चीज़ छोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले भी मैंने देखा था कि हमारे एक दो श्रोता जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि उनको बहुत सालों से एडिक्शन था और उन्होंने इसे छोड़ दिया। तो आपने कभी ऐसा सुना अपने आसपास?
1: आसपास काफ़ी बार सुना है कि जो लोग पहले सबसे ज़्यादा एडिक्ट थे वो इन चीज़ों से दूर होने लगे, बट दूर होने के पीछे कारण कई बार फैमिली होती है और कई बार एक सिंपल सा मोटिवेशन ही उनके लिए काम आ जाता है। तो अगर आपके आसपास भी अगर कोई लोग तंबाकू यूज़ करते हैं या फिर एक बार उन्हें ज़रूर उनकी इस लत को आप ज़रूर छुड़वाइए, क्योंकि एक आपका ये कदम उनकी लाइफ बदल सकता है। और आज का ये दिन वही है कि हर कोई एक संकल्प ले कि मैं कम से कम एक आदमी को इस नशे से ज़रूर छुड़वाऊंगा।
0: और बहुत से ऐसे अब तो सेंटर्स भी बन गए हैं जहाँ पर जो लत होती है या फिर एडिक्शन होता है उसे छुड़ाया जाता है। तो आप ऐसे सेंटर्स की भी मदद ले सकते हैं, और कई बार साइकोलॉजी में भी ये जो चीज़ है इसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न अगर समझा जाए, अगर किसी साइकाट्रिस्ट की मदद ली जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन छोड़ना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो अगर आप भी इस विषय पर बात करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका नंबर है 02912555300, और दूसरा नंबर है 2554300। तो आप जल्दी से फ़ोन घुमाएं और हमारे साथ जुड़ के इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं।

0: तो हमारे पे कॉलर आ चुके हैं हमसे बात करने के लिए, तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते, गुड इवनिंग आपको और नितेश भाई को,
0: गुड
1: नितेश
0: इवनिंग
1: सर
0: सर।
1: का
0: गुड
1: प्यार
0: इवनिंग,
1: भरा
0: गुड इवनिंग
1: नमस्कार।
0: सर। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम दिनेश सोडा है।
0: दिनेश जी, तो बताइए, आपने जैसा आज का विषय सुना या सुना है ये
1: नो
0: है।
1: टोबैको डे,
0: हाँ
1: देखिए एडिशन ऐसा होता है कि मैं उस पाउच पे लिखा रहता है कि टोबैको किल्स, यानी कि तंबाकू जानलेवा है और काफी इफेक्ट डालता है बॉडी पे, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। और एक सिगरेट का धुआं
0: हाँ,
1: जिंदगी के 11 मिनट कम करता है। तो
0: ये तो बात है।
1: आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैंने 16 लोगों को तंबाकू छोड़ा है जो मेरे आस पास रहते थे, और मैंने उनको गिफ्ट देखे है ना, ये
0: अच्छा
1: छोड़ा है। उनको मेरे मोबाइल शॉप है, मैं
0: हाँ
1: मेरे फ्रेंड को बोलता था कि अगर आप तंबाकू छोड़ेंगे, पूरे आज पनीर लेते हो, अगर आप ये मेरे साथ संकल्प लेते हो तो मैं आपको एक शानदार गिफ्ट दूंगा।
0: क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने 16 लोगों को इससे दूर किया है तो आपको बहुत
1: जी,
0: बहुत
1: 16 लोगों
0: बधाई
1: को मैंने तंबाकू छोड़ा दिया है और आज वो एकदम स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि गुटखा खाने की वजह से 3 लोग ऐसे थे जिनका मुंह बंद हो गया था, बिल्कुल मुंह नहीं खुल रहा था। वो
0: जी
1: जनरल फिजिशियन के पास गए तो
0: हाँ
1: जनरल फिजिशियन ने उनको बोला कि आपको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो इतने एडिक्ट है कि मतलब कहने के बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहे थे।
0: हाँ
1: वो कह रहे थे कि जिंदगी छोड़ देंगे लेकिन हम तंबाकू गुटखा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन
0: नहीं
1: मैंने
0: नहीं
1: कहा
0: ये
1: नहीं देखो
0: आपने
1: यही
0: बहुत
1: आदत है
0: ही
1: मैडम, व्यसन का शौक कुत्ते की मौत, गुटखा खाकर गाल गलाया, कल कहते थे ये फैशन है, दुख नरक का भोग रहे हो, अभी ये कोई जीवन है, जरा
0: हाँ,
1: सोचिए।
0: आपने बहुत अच्छा कार्य किया सर। अगर आपने 16 लोगों को छुड़ाया है, और आप भी आगे प्रयास कीजिए कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें, इस प्रैक्टिस को, क्योंकि आप बहुत अच्छा
1: तो
0: काम कर
1: मुझे
0: रहे हैं।
1: बहुत दूर की बात है, मेरे घर में कोई मतलब इस्तेमाल नहीं करता, चाहे गुटखा बीड़ी सिगरेट ना,
0: जी
1: मैं हर
0: सर,
1: चीज का
0: आपसे बात करके
1: इंसान
0: बहुत अच्छा
1: मतलब
0: लगा।
1: हर चीज़
0: हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: रिश्तेदार उसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. हेलो
1: मैडम,
0: हेलो
1: ओम सिंह बोल रहा हूँ, रामपुरा से। हमारे
0: जी सर नमस्कार. आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है.
1: यहाँ मौसम खराब है, आंधी चल रही थी।
0: अच्छा, आंधी आ रही है. ओके तो सर आपने आज का विषय सुना होगा, नो टबैको डे पर हम बात कर रहे
1: न्यूज़पेपर
0: हैं.
1: लिया है, नो तंबाकू डे।
0: आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
1: मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे परिवार में 20 जनों को तंबाकू छोड़ा दिया है,
0: अरे वाह.
1: और मेरे परिवार में तंबाकू बीड़ी सिगरेट कोई नहीं पीता है।
0: अरे आपने 20 जनों को कैसे छुड़ाया सर? ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है.
1: मेरे
0: कैसे किया
1: परिवार, जो
0: आपने?
1: मेरे दोस्त थे, उन सबको मैंने छोड़ा दिए।
0: तो कोई आपने ऐसा उनको संकल्प दिलवाया या फिर एकदम तंबाकू दूर कर दिया? कैसे किया आपने?
1: मैंने उनको संकल्प दिलाया था, मैंने कहा अगर दोबारा कभी नशा बिल्कुल मुक्त करना है हमारे समाज में।
2: नशा छोड़ के भारी नशा चालू कर दिया।
3: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया है। बस ये संख्या रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। आपको और भी लोगों को छुड़वाना चाहिए।
0: ये जो चीज़ थी नितेश, ये सुन के अच्छा लगा कि हमारे आसपास ऐसे भी जागरूक लोग हैं जो इस चीज़ से दूर जा रहे हैं और अपने परिवार और अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं इस नशे से दूर होने में. तो आप सब भी अगर ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं तो ज़रूर इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आपके आसपास तंबाकू की क्वान्टिटी कम हो, क्योंकि देश के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके खुद के लिए बहुत ही बेटर है. तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा अगला म्यूजिकल ट्रैक.

0: श्रोतो, आज की चर्चा से हमें ये समझने का अवसर मिला है कि तंबाकू छोड़ना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। जिंदगी की राहों में उजाला बनाए रखिए, हर बुरी आदत से खुद को बचाए रखिए, सांसों की कीमत समझिए जनाब, तंबाकू नहीं मुस्कान को साथ रखिए। इसी संदेश के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मैं था आज की शाम आपके साथ नितेश, और मेरे साथ
1: और मैं हूँ रिद्धि। जैसा नितेश ने कहा, आप इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपना और अपने अपने लोगों का ख्याल रखिए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई।

है। इस मामले में दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवार सर्य अखिल भारतीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चौपाल से जाएगी शाम 7 बजे। सीमा डेरी गूंज आप तक पहुंचेगी शाम 7:30 पर।

कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गणगौर। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार। सुबह 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये था कार्यक्रम विवरण, प्रस्तुत है देशगान।

0: समूह शर्मा भी आपने सुना देश गान, आकाशवाणी जोधपुर का यह सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारम्परिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिणपूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात रक्षण प्राप्तुम

0: ये तुम्हारे नाम
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
7: हर घर सूर्यघर।
8: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
9: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
8: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
9: कहाँ से पता चलेगा?
8: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
9: आज ही सर्च करूंगा।
8: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुई। और IPL क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।
11: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
10: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
11: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
10: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते

0: हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्डधारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्यभर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
1: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
0: खेती में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। NICDC द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आम जन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT रिचार्ज शाफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आम जन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले तीन मैचों में RCB ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9-9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देशभर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं। और IPL क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को DGP डेस्क से सम्मानित किया गया है। SP अमित कुमार, DSP प्रेम कुमार और DSP हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। SP अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार DGP डेस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में SP रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्षराज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा

0: कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले तथा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा कैंपस प्लेसमेंट शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि ये शिविर मिनी सचिवालय में लगाया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड ऑफिसर, सेल्स प्रतिनिधि, मशीन ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए। झालावाड़ में पिछले दिनों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता रखी गई। इसमें उदयपुर के व्यांश भटनागर ने ओपन वर्ग का खिताब जीता, वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके बैंक खातों पर साइबर धोखाधड़ी की 36 शिकायतें दर्ज थीं। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की ओर से नशा माफिया से जुड़े अपराधियों पर एक्शन लिया गया। उनके द्वारा बनाई गई दुकानों और मकानों तथा अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहले आज की खास खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों सू चौखे काम सू जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करो आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करया उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स बीच वेली खिताबी भिड़ंत समाचारों के साथ मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील करी है कि वे ऐड़े लोगों रे प्रयासा ने पहचाने और वारी सराहना करे जका कुछ नुओ कर सबने प्रेरणा देवे है आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लोगों से खुद

0: किनी चोखा काम सू जुड़ने री अरज करी।
1: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम री 134वीं कड़ी माए प्रधानमंत्री लोगों सू गर्मी रा मौसम माए सावचेती बरतने और न्यारा न्यारा सरकारी महकमा कानी सू जारी गाइडलाइन री पालना करने रो कयो। देसी पेय पदार्थों रो जिक्र करता थका श्री मोदी आने अपनाने री अपील करी।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री हाल ही री आपरी नीदरलैंड यात्रा रे चालता वठेरी सरकार कानीसू चोल काल री प्राचीनतम पट्टिकावां ने भारत ने सौंपने माथे इन्हें घणो गर्व रो बकत बतायो। वणा खगोल विज्ञान रे खेतर माए युवावां ने उछास रो जिक्र करता थका देश रे युवा साथियां सू इन विद्या माए पारंगत होने री अरज करी। गर्मियां री छुट्टियां माए एस्ट्रोनॉमी सू जुड़िया विषय माथे क्लब बनार नुओ सीखने रो सुझाव दियो। इनसू पहलिया प्रधानमंत्री आपरा विचार साझा करता थका देशरा न्यारा न्यारा आंचलामाए हुवेरिया नवाचारा राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियां और गांव कस्बारी बातारे साथ है गंगा डॉल्फिन ने बचावा खातिर प्रेरणादायी कामारो उल्लेख कर्यो। वणा रांची माए संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स होड़ारा रिकॉर्डधारी विजेतावां ने बधाई देवता थका इन्हें देशरा खेल भविष्य खातिर उपलब्धि बतायो। राज्यभर माए प्रधानमंत्री रे मन की बात कार्यक्रम ने सुनन ने लेर खासो उछास निजर आयो। प्रदेश भाजपा री कानीसू कार्यक्रम रे सजीव प्रसारण री व्यवस्था करी जी। पार्टी मुख्यालय माथे राखी जा कार्यक्रम माए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पदाधिकारी भीड़ाव्या। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आप रे निवास माथे युवा रे साथे इन कार्यक्रम ने सुनियो। इन मौके माथे मुख्यमंत्री कयो कि राष्ट्र निर्माण माए युवा वारी भूमिका खास है। इन सारू वे सामाजिक सरोकार रे कामासू जुड़े और नवाचार अपनार आप रे कौशल माए बढ़ोतरी करे। वणा कयो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विचार युवा माने सकारात्मक बदलाव और विकसित भारत रे निर्माण खातिर प्रेरित करे है।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
0: खेती माए उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने बकत माथे सलाह देने रे खातिर कालेसू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। 30 जून ताई चालन वाला ई अभियान रो शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला सू करेला। अभियान रे चालता पंचायत स्तर माथे सक्रिय भागीदारी और योजनावारो लाभ सीधे गांवा ताई पहुंचायो जावणो पक्को करयो जावेला। कृषि मंत्री सगला राज्यां रा मुख्यमंत्रियां सू इन अभियान माए वारी भागीदारी री खातिर बात करी है। श्री सिंह केंद्रीय मंत्रियां और दूजा जनप्रतिनिधियां सू भी इन पहल माए भेड़ा होने री अरज करी है। वाने कृषि विज्ञान केंद्रा ICAR संस्थाना कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अहलकारा साथ है वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी रे साथ है इन अभियान ने आगे बधावन री अरज करी है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडकोरी भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति ने सरकार मंजूरी दे दी है। रिडकोरा मुख्य कार्यकारी अहलकार सुरेश ओला बतायो कि प्रस्तावित नीति माए सामान्यतः भूखंडारो आवंटन 99 वर्ष री लीज माथे करो जावेला। वठीने फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जड़ा विशेष खेतरा रे खातिर 33-66 वर्ष ताई रो इन लीज रो प्रावधान राख्यो गयो है। जल शक्ति मंत्रालय काले नवी दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करेला। इनरो लखस भारत रे जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करनो है। मंत्रालय कयो है कि इन कार्यक्रम रो खास आकर्षण एक एड़ी पहल री शुरुआत करनो है जिन रो लखस जल

0: संसाधन प्रबंधन पेयजल और जलवायु परिवर्तन सु निपटणो है। कार्यक्रम रे चालता जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रे बीचे जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन खातिर एक समझौता ज्ञापन माथे दस्तखत कराया जावन री आस है। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेला। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। प्रदेश में चलाया जा रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां राखी जी। जिला मुख्यालय मथे साइकिल रैली निकाल रहे लोगों ने पानी बचावन रो संदेश दियो गयो। जालोर माए निकाली जी रैली माए बड़ी तादाद माए युवा मा हिस्सो लियो। चुरूरा पुलिस लाइन मैदान माए राखी जा श्रम दान कार्यक्रम माए लोगां बढ़ चढ़ भागीदारी निभाई। इन मौके माथे नाथो तालाब माथे कार्यक्रम राखर जल पूजन करो गयो। सरहदी जिला जैसलमेर माए अभियान रे तहत भीषण गर्मी ने बीचे रागीरा ने शरबत और नींबू पानी पिलायो गयो। बालोतरा रा जसोल माए प्रभात फेरी निकालर जागरूकता बढ़ाई जी। इन तरह पाली रे तखतगढ़ माए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गंगा जल रो पूजन कर आमजन ने शपथ दिलाई। करोली रा पांचना बांध माथे राखी जा कार्यक्रम माए जनप्रतिनिधिया रे साथ आमजन ने पौधारोपण और जल पूजन करो। शिरोई सु माणा खबर नवीस बतायो कि वठे मुख्यमंत्री कार्यालय सु पहुंची टीम अभियान री प्रगति री समीक्षा करी।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान जल शपथ वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को पीसीडी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग एमपीटी रिचार्ज साफ्ट तथा सीसीटी कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल आकाशवाणी समाचार सिरोही।
0: जोधपुर री बड़ली ग्राम पंचायत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जिला अहलकारा रे साथ बड़ली भैरूजी तालाब माथे श्रमदान कर आमजन सु सहभागिता निभाने रो हेलो करो। अभियान रे तहत काले जिला माए कृषि संगोष्ठी वेला और नवाचार प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रियो है। ओ दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लक्ष्य सु विश्व स्वास्थ्य संगठन कानी सु शुरू करी जी महती वैश्विक पहल रो हिस्सो है। इन वर्ष रो विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर माए भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अब मौसम प्रदेश रा कई हिस्सा माए लाडला दो दिना सु बण्योड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माते आज भी धूलभरी आंधी रे साथ बिरखारी गतिविधियां दरज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां माथे बरसात रे साथ है ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है। महकमा बीकानेर फलोदी जोधपुर नागौर और डीडवाणा कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट वठीने जैसलमेर श्रीगंगानगर चूरू अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट बतायो है। मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी विक्षोभ रे असर सु आज बीकानेर जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा जोधपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक ठोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बीचे खेलो जावेला। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम माथे सिंजा 7:30 बजे सु शुरू वेला। इन सीजन माए दोनों टीमा चौथी बार एक दूजे रे सामने वेला। पहले तीन मैचा माए आरसीबी 2 माए और गुजरात टाइटन्स 1 माए जीत हासिल करी ही। दोनों ही टीमा लीग मुकाबले माए 9-9 जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल करया हा। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन माए चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करो हो। इन खिताबी मुकाबले ने लेर क्रिकेट प्रेमिया माए रोमांच बण्योड़ो है। और आखिर माए खास खास खबरां एक कर फेरू सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियां सु चोखे काम सु जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करिया। उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सु देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बीचे वेली खिताबी भिड़ंत। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ, तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.5।
10: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनना सगला हेताड़ श्रोताओं ने घने मान सु गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा रा
0: राम राम। दीनदयाल भाई देखो कि आज इन महीने उगी तारीख आखिरी,
1: बिल्कुल आखिरी तारीख आएगी साई 31 मई।
0: मैं जून और जून रो जको अंतिम सप्ताह है नी, ये मैं मारवाड़ धरारी खास तौर माते पश्चिमी राजस्थान री किसानारी जकी आंखिया है बे आसमान री तरफ रह के हे बादलिया आ गया है, हे बरसात होगी तो कठे न कठे बरसात री उड़ीक जकी है काले हुरु हो जाए।
1: बिल्कुल हुरु हो जाए। और दूसरी बात आ है गुरिंदर भाई के जिन टाइम बरसात री उड़ीक रहे नी, वो कह नहीं के मोरिया भी जिन तरह काला बादल वास्ते उड़ीक राखे उन्हीं तरह किसान भाई, क्योंकि पूरी साल भर री बहनी जकी है मेहनत बा इन माते डिपेंड करे की भाई टाइम माते और अच्छी बरसात हो जावे तो जमानो बढ़िया हो।
0: बिल्कुल इन धरा इन धरती इन प्रकृति रो जो अमृत है
1: बिल्कुल सा
0: वो बरसात मुजब आसमान बरसे, पहला तो कहीं की टेक्नोलॉजी ही को नहीं तो कोई बायरो बाज तो आदर होती बायरो किन दिशाओं पे तो उन कियो जानवर बोल तो बिनी साहब बे मिर्गर तय करन कहता भाई अमाउसू पहला बरसात हो जाए या पछे हो, उन्हीं साहब किसान आप रे आगतन पाछतरी खेती कर तो हमें आगे टेक्नोलॉजी रो जमानो। और हमें जका अपना भारत रा जका सेटेलाइट आसमान रे मायने है बे मिनट मिनट री फोटो जकी है नीचे भेजे के बादल किन गतियों किन जिगियों उठिया है काले कट तक जाई ही कई आनी स्पीड है, ये सब आंकड़ो है जको जरिए मौसम विभाग आपने उपलब्ध हुए। पहला तो कहीं एक अनुमान ज्यादा हो, वैज्ञानिक तथ्य कम आ, मैं वैज्ञानिक तथ्य माता ही मौसम रो अनुमान है जको एकदम सटीक बे वे अगर कह दे यूं बिल्कुल दिन रे महीने तावड़ो है कटी है वे के भी आज बरसात हुई तो उठे बूंदा बांदी पक्की हुई
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सेटेलाइट में बादलिया दिखे
1: दिखे
0: और आपने जो मैप में देखा नहीं हो कटी कहीं गूगल मैप तो ये में भी अगर आप देखा तो आवे के भी अटेरो केड़ो स्थिति है अटे वनस्पति केड़ी है धरारी प्रकृति केड़ी है तो लाल दिन में पढ़ियो भी केरलू तो मानसून निकल गयो महाराष्ट्र ओडे कोडो पहुंच
1: गयो
0: महाराष्ट्र पार कर गुजरात गुजरात ये रो जको है पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश रा प्रवेश रे समय जिन तरह री बरसात होवे न पाछे ऐ जकी है हिमालय टकरान पाछी आवे जणा जमन बरसात
1: जमन होवे। और इन साथ ही जको है आप

0: ये बात करी गुरिंदर भाई कि भाई पहले तो पूर्वानुमान हो तो और अब्बे जी को है पूर्व सूचना होवे एक तरह री कि भाई वास्तव रे मायने स्थिति आ हटे है और इन तरह रो माहौल बन रियो है, अटे विक्षोभ उठियो है, अटे बादला उठिया है, अटे कम दबाव रो क्षेत्र है, अटे बत्ता बद दबाव रो क्षेत्र है। वेणे आधार माते सारा आंकड़ा री जी की है कैलकुलेशन होवे और उन आधार माते जी की सूचना दीवीजे, वे सूचना मा अधिकतम मामला रे मायने जी को है सटीक
1: सटीक
0: निकले।
1: बिल्कुल। देखो पहला तो पूर्व अनुमान हो,
0: हाँ
1: और हमें अनुमान नहीं सूचना
0: अबे
1: है।
0: सूचना है
1: अगर मौसम विभाग किणी तरह री सूचना देवे के भाई अंधड़ आई या इन तरह री आई, तो यहाँ सूचना रे मुजब जका भी कहवे के भाई इन तरह रा उपाय करो, बे उपाय आपने करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: उन जन हानि है जकी कमु कम होवे, और खास तौर माते बरसात रो टाइम हुए ना बिजली जकी पड़े नी,
0: हाँ
1: तो उन बिजली पड़न में आपां देखा कि हर साल कटे न कटे कोई बिजली चपेट में आ जावे, तो जितना भी आपने सुरक्षा रा उपाय है जतन है बे आपने करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: दीनदयाल भाई सुरक्षा रा जतन, शरीर रे स्वस्थ रखने रा जतन तो आपने पूरे जीवन राखना चाहिए।
0: राखना ही
1: खास
0: पड़ी।
1: तौर माते यू बचपन लेन युवा अवस्था तक आपा शरीर ने अगर यू पाल न राखा, उरी एक्सरसाइज नहीं करा, काम काज नहीं करा, तो वो शरीर उन तरह हो जाए।
0: बिगड़ जाएगी।
1: और अगर किए ने आपा उन्हें भाई काम काज में ले वहां जो को टाबर रो खून है, दौड़ भाग करी, उठक बैठक करी, तो उरी प्रकृति अलग हुई। तो जो को टाबर खेल जुड़ियो रहे उरी फिजिक अलग है, और जो को खेल नहीं जुड़ियो रहे उरी फिजिक एकदम अलग हुई।
0: बिल्कुल सही कियो गुरुंदर भाई। और ये फिजिक रे साथ ही साथ आपरे शरीर ने स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी इंसान री खुद री है, और उन वास्ते एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है कि आपने नशा पतों आगो रेवनो पड़ी।

0: भाई बहुत लाख रुपयारी कही के भाई नशो जको है वो इन कीमती शरीर रो नाश करे।
1: नाश करे।
0: और भारत री जकी उभरती भी ताकत है, भारतीय युवाओं रो जको ज्ञान है, युवा जिन तरह दुनिया में आगे बढ़ रिया है, तो कई भांत भांत री जकी है वे कोशिश हुए कि अठेरे युवाओं ने नशे माते लगा दो।
1: बिल्कुल
0: खास तौर माते आपा देखा बॉर्डर एरियो राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, तो उठे ड्रोन वो नशो नाके के अठेरा युवा और नशो ही एक जावेन, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जकी है वह खत्म हो
1: खत्म
0: जाए।
1: हो जावे। सही बात है। इन तरह प्रयास, इन तरह कुत्सित प्रयास जिकाने आपा कह सका गुरविंदर भाई, बे कई पड़ोसी देश कर रिया है, पर आपने ओ ध्यान रखना पड़ेला और आपने युवाओं ने विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेला कि भाई मैं एडो कोई काम नहीं करा कि जिन माध्यम से आपनो न सिर्फ शरीर, न सिर्फ परिवार, न सिर्फ समाज, बल्कि पूरा राष्ट्र बिगड़ जावे।
0: बिल्कुल, देखो ये मैं पहली जिम्मेदारी तो घर परिवार री, इन पछे गांव ग्वाड़ री, इन समाज री है।
1: बिल्कुल है
0: और
1: सर।
0: हमें देखो नशा भी भांत भांत रा सूखा नशा आ गया, कईयां रे तो एड़ा नाम है जका आपने ठाईच नहीं
1: हुनिया ही
0: आया,
1: कोनी कदी।
0: तो कह के वो तो सुपारी में मिलान खावे और हिगरेट में बेल ने पिए, ये ने तो नोट पिए। तो देखो भाई कितनी चलन लार ले 10-20 साल में नशेरी बढ़ी है, कितना परिवार इनू बर्बाद हुआ है।
1: सही बात है।
0: तो ये रो आकलन करो कि नहीं भाई, और नशो जको माने तो मारे पूरे परिवार ने समूल नष्ट कर दे। इन वास्ते गांव रे मायने कोई भी इन तरह रो व्यापारी वे या कोई अड़ो आदमी जको नशेरी मनवार करे, वे ने बटाई टोको रोको के भाई तू आ मनवार नहीं, नाश कर रही है।
1: बिल्कुल सही बात है। और इन तरह की जागरूकता लाउनो जी को काम है वो परिवार रे साथे साथे गांव गवाड़ा बड़ा बुजुर्गों रो भी है गुरिंदर भाई। विशेष रूप से बने यदि ठा पड़े कटेन कटे कि भाई इन तरह की कोई स्थिति अपने गांव रे मायने है, कोई नशा पतारो व्यापार कर रही है, कोई लोगों ने इन तरह बरगला रही है, तो बने बटे भी ने टोकनो चाहिए और उन्हें खिलाफ जी को है कोई न कोई एक्शन, कोई गतिविधि लेनी चाहिए।
0: देखो युवा अवस्था रे मायने टाबर वे

0: संगली हूँ कहीं है कटी छा
1: भटक
0: चो
1: जावे।
0: चोरी छुपे कटी बीड़ी पिए कटी हिगरेट पिए। तो कोरोना काल में आप देखिया के जक्का भी धूम्रपान करे हा या क्यों जक्का रे के चेस्ट इन्फेक्शन हो
1: हाँ
0: और उठे अगर वो कोनर कोरोना रो जो को इम्पैक्ट पड़ियो तो वो में जकी मृत्यु दर ही बात ज्यादा ही,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि भाई जक्का फेफड़ा ही स्वस्थ नहीं है तो पच वो सांस की कर
1: की
0: ले
1: कर ले।
0: और इन फेफड़ा रे मायने आपा बीड़ी रो ने सिगरेट रो धुओं भरबो करा तो वो में तो कड़ास जमी जमी।
1: जमी
0: और भारत रे मायने बहुत बड़ो आंकड़ो है धूम्रपानु मौत रो।
1: बिल्कुल है गुरुंदर भाई, क्योंकि फेफड़ा रामायण जी की है, संकुचन और विस्तार जी की प्रवृत्ति हो नहीं, फेफड़ा फैले और फेफड़ा से कुछ धोए जन आपा प्रॉपर तरीका सु सांस ले सका और सांस छोड़ सका तो बा स्थिति जी की है, बटे खराब हो जावे बिगड़ जावे। बैणी जी की पंपिंग री कैपेसिटी है बा धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो जावे और फेफड़ा पड़ जावे जाडा, फेफड़ा पड़ जावे कड़क। तो इरमायने जी की बा नरमाई नहीं रहे जन वह आदमी जी को है सांस री तकलीफ उठे बिना कई तरह री दमारी
0: बिल्कुल
1: शिकायत हो
0: आज
1: जावे।
0: जो फेफड़ा वे कोर्निया वे जो ऑक्सीजन ने शोषित को नहीं करे
1: हाँ
0: और ऑक्सीजन शोषित नहीं हुए तो उन टाबर ने कहीं ही लागे वो पच वो नशो कर ही करे। तो क्यों नो मतलब है भाई देखो कि नशे दूरी ही जीवन है।
1: बिल्कुल
0: अगर बालपने में ही आप बीड़ी हिगरेट पी पीने लाग गया ए जका पगलिया है ए गलत मार्ग जा रहा है तो ये ने उठे ही टाप दो।
1: ढाबनो पड़ी।

धूम्रपान एक तरह मौत ने बुलाओ दो। सरकार देखो कि बीड़ी इनहिग्रेट भाव में टैक्स में लगातार वृद्धि करे कि भी ज्यादा ज्यादा महंगी करो जो कम कम लोग ये ने खरीदे। तो भी लोग देखो आपान ढाबा माते गांव रे महीने हो चाहे शहर में हो कस्बे में हो, खास तौर माते युवा जका है।

0: में हो, चाहे शहर में हो, कस्बे में हो, खास तौर माते युवा जका है बे धूम्रपान बड़ा शौक उन करे, तो कटे न कटे हर सिगरेट रे माते, हर बीड़ी माते उन कहीं कैंसर युक्त फेफड़े री
1: हाँ
0: फोटू होने बावजूद भी
1: बिल्कुल, चेतावनी दी ओड़ी रहे फिर भी जी को
0: तो
1: है
0: भी बे
1: लोग।
0: बच्चा पिए तो, और 18 साल हूँ कम है बेटा बर भी आपन पीता दिख जाए, तो दुकानदार रो भी मौलिक दायित्व है कि भाई वो छोटा टाबरा ने इन तरह का नशा नहीं देवे।
1: बिल्कुल, और कई जगह इन तरह नियम बनाया है गुरिंदर भाई के, जो स्कूल वगैरह है बेना 100 मीटर दायरा मायने इन तरह चीज नहीं बेच सके कोई धूम्रपान संबंधित, और भी कई तरह नियम है कायदा है। पर मैं वो जानू के ए लिखित नियम कायदों सबों मोटो नियम तो वो है कि आपरी जिकी खुदरी इच्छा शक्ति हो वेला दृढ़, तो आप कटे भी गलत काम में नहीं फसोला, और घरवाणारी जी की है नजर होनी चाहिए जब निरीक्षण वाली ऑब्जर्वेंट है नी, जन
0: बिल्कुल
1: जान कटे मामला सुधरेला।
0: भाई लोग, आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस है, पूरी
1: बिल्कुल
0: दुनिया
1: सर।
0: रे मायने इन बीड़ी हिगरेट और इन जको फेफड़े में धुआं लेवन री प्रक्रिया है, चाहे चिलम हो चाहे हुको,
1: बिल्कुल
0: ये ने डाबन रो, ये ने रोकन रो प्रयास युद्ध स्तर माते भांत भांत री सरकारा कर रही है। तो आपनों भी फर्ज है कि आपा धूम्रपान करने वाले आदमी ने हम जावा, उन्हें बतावा कि ये रो भाई फायदो कहीं नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है, पैसे में भी है, शरीर भी है, स्वास्थ्य है।
1: सही बात है, और वैसे भी किया करे गुरिंदर भाई के कोई रो धन गयो परो तो कोई बड़ी बात नहीं गई है नी, लेकिन स्वास्थ्य गयो तो बहुत बड़ी बात गई, क्योंकि स्वस्थ शरीर मायने स्वस्थ मस्तिष्क रो निवास होया करे, और व्यक्ति जी को है आप रो जीवन स्वास्थ्यपूर्ण तरीका यदि जीवे तो वो न सिर्फ घर परिवार वास्ते बल्कि समाज और राष्ट्र वास्ते भी कुछ अच्छो काम कर सके।
0: भाई लोग देखो कि आपने पश्चिमी राजस्थान रे रीति रिवाज में कोई भी आनो टाणो वे मौत बर्तन, तो थाली रे मई ने बीड़ी इन हिगरेट इन माचिस री मनवार वे, तो कठे न कठे आए कि गलत परंपरा, इन परंपरा ने रोको कि नहीं भाई आपने अट बीड़ी हिगरेट रो मामलो को नहीं,
1: नहीं है
0: आज की मान मनवार है, नशे री जकी मनवार है, वह उत्सव में या कोई काम काज रे मायने कोई रोक ही नहीं, जनई आ आगे पड़ी दृढ़ता रे साथ रोकनो पड़ी, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर में ते गांव रे जका पढ़िया लिखिया मौजिज आदमी है,
1: बने आगे
0: बे
1: आना पड़े,
0: एड़ी कुप्रथाओं ने रोकने वास्ते आगे आई, जनई ए प्रथावा रोकी।
1: और अप्रथमा कुप्रथमा यदि रुकेला जनेज समाज आगे बढ़ेला गुरुंदर भाई, क्योंकि समाज रे आगे बढ़न ले लारे लोगारी जी की है स्वास्थ्यपूर्ण जीवन, सुस्वास्थ्यपूर्ण और सकारात्मक सोच, और पचे उन्हें लारे जी को है दृढ़ निश्चय रे साथ कठिन परिश्रम, ए सब चीजा जुड़े जन जान कटे कोई समाज और देश प्रगति करिया करे आगे बढ़िया करे।

0: बिल्कुल देखो, और आगे बढ़ते थके हमें आप आगे उठे के जटे कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो।
1: बिल्कुल सा।
0: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा ने दिलाओ सीख,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: नवलबा राम राम।
1: अरे भाटक बजाओ मत, मैं आ रहा हूँ डाली है भाई।
0: राम राम बगलू
1: राम जीव तारा भाई, मैं आ रहा हूँ कमरे में आ रहा भाई। कौन है दड़ो ओड़गियो कोनी
0: अगजा नोलबा अगजी अखिलेश
1: अगजी आया नी। अरे वाओ अगजी थे आया आज बगजी। दिन बढ़िया है जो आया तो आज मार जी हो रो वो हुरजवार है।
0: हाँ?
1: मारे दिन क्यों है जो को थोड़ी कहीं एड़ा कोई मंगड़े में कोई गौड़ लगा।
0: हाँ?
1: मैं का आज कोई भाई सैन मिलने आई है भाई। देखो क्या कोई मन मेलू आवे नी।
0: हाँ?
1: थोड़ो जी हो रो वे वाओ अगजी वाह। और हो तो हाथरा पांतरा भाई तावड़ियों घनो पड़े अगजी। नव तपो आले है नव तपे में कुदरत आप काम करे। देखो ठाडो जीमो ठाडी ठोल रहो। देखो जल के आली छा पियो।
0: हाँ?
1: दही पियो राबड़ी पियो।
0: हाँ?
1: और माँ तो ढकन फिरो है जिको कह नहीं कर खुदो खुदरो तो जाप तो राखड़ूंगे।
0: हाँ नोलबा।
1: पर कोई पंख पंखेरू है कोई है जिको जीव जिनावर है बारी थोड़ी कह नहीं भाई थोड़ी ध्यान रख जो।
0: हाँ, हाँ
1: आ बात रे।
0: अरे नोलबा अरे नवलबा अरे नवलबा ते मानो रे भाई
1: उबड़ गो।
0: हाँ तो क्यों
1: बीडीएन मंडल दिला थी
0: क्यों दिलाऊं
1: यार बीडीएन मंडल
0: नवलबा थाना पहले हम जाए।
1: अरे इजरेट बड़ी बात है मंडल
0: नवलबा।
1: अरे मारे कब को घर के देनी।
0: अरे दूजो रास्ता और है नी
1: कम है। अरे वो बीड़ी पीऊं
0: ना।
1: अरे बीड़ी में आज मार सिलम लिया सिलम लिया
0: नहीं नवलबा मैं नहीं।
1: अरे नहीं आज मारो होको लिया
0: तो पहले कहना मान तो माना क्यों नहीं था पहले
1: कब मानने भाई मारे
0: पहले कितना कहता था समझा दिया था ना समझा दिया पहले चिलम किए था हमें बीड़ी सिगरेट में आया क्या तंबाकू ले ले कही था ना।
1: अरे हुको पीऊं जो मारे कहो है
0: हुको नहीं पीना। नवलबा विश्व तंबाकू दिवस है आज याद रख लो दिंदरी यूं कह करो
1: कहो दिंदरी लाज रह के मारू मारे जाके।
0: देखो नवलबा इन्हें और बीमारी हल्ली हो है।
1: अरे मारे में कहो बीमारी हो मार तो मुझे बीमारी होगी जी होगी
0: तने कही था बीमारी लागे।
1: अरे मैं तो भाई देखे के हूँ तंबाकू में थोड़ो गुड़ गालू जो मारे कहीं कब खलक जा बात है हूँ कहो है की बीड़िया में बीड़ियन गुड़ में भिजो पाजी हुकूं।
0: हाँ उल्टा रास्ता करो।
1: हाँ उल्टा कहो रास्ता कर थार मार तो जीव जड़ी है थार कहो का न देख नहीं थी
0: खांसे जुखाम डॉक्टर दिखाओ नहीं
1: कहा देखा
0: इलाज नहीं हो बैठे इन और हल्ली बैठे।
1: अरे कोई नहीं मगज फिल्टर हो जाए धुआं एकदम हूँ है
0: माथा में धुआं चढ़ जाए तो फेफड़ा में धुआं भर जाए पूरा।
1: अरे को भर जाए भाई कब क्यों करे मारे घर देख मारे घरे आज मारो कहो नहीं माने नहीं
0: मैं गलत बात की मान लो नवलबा
1: भाई
0: आज आपने मने वादा करना पड़ेगा आज लेन लास्ट तक जद आप जीवा और तंबाकू नो फेंक दो बात
1: फेंक दो
0: फेंक दो हाथ ही लगा दो देख दो ही नहीं है।
1: अरे मार तो कहूँ हूँ जर्द और तो खाऊ को नहीं
0: ना की नहीं जर्दो ने सिगरेट ने बीड़ी ने चिल्लम की नहीं करना अपने।
1: अरे मारू रह जाए लगो नहीं मार
0: अरे हैंग रह जाए
1: मार प्राण पंखे।
0: देखो नवलबा यूँ है की एनटीपी से एक संस्था हुए जो आदमी छोड़ने चाहे नहीं है भारत सरकार कार्यक्रम चला हुए मैं तो वटे लेन चाल।

0: मत करो।
1: उसने लेन हाले जी को हाल गया आज पहले ही कोई मार बड़े रखे कोई कह भाई को किया नहीं तो थे है जो कहीं है
0: बड़े था नहीं ने बचे
1: है थे तू है जो कहीं कह
0: बड़े राजू की गलती करो थी गलती करो।
1: अरे देखो है जो
0: देखो नवला बा कई बात लुगाया भी गीत गीत में गावे ठाई नहीं पड़े
1: कई ठा पड़े मने लुगाया लुगाया गीत गई।
0: अरे घने गावे तंबाकू मत पियोड़ो तंबाकू मत पियोड़ो गीत नहीं होने
1: आपने
0: सुना रही हूँ आपने गीत है
1: गीत है नहीं
0: मगज।

0: पोत या
1: ठीक है डबल बाबा, पहले जी के जन्म लिया मैं बात करा।
0: हाँ बता दो।
1: एक है वनराज भाटिया, आज दिन 1927 मुंबई में जन्म लिया, एक भारतीय संगीतकार है और न्यू वेव सिनेमा रे वास्ते जाना जाता।
0: तो ठीक ठीक है, सिनेमा में काम करियो तो घना इच्छा को करियो, इच्छा की फिल्म बेकानी फिल्म दूजी बनी हुई।
1: हाँ कहीं यार पुरस्कार भी जीतिया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
0: करिया तो बढ़िया है भाई, इतनी बात है। बड़े
1: विनोद मेहता, आज दिन 1941 में जन्म लिया, भारतीय पत्रकार संपादक और राजनीति टिप्पणीकार भी रिया। 1995-2012 तक आउटलुक रे छह संस्थापक प्रधान संपादक।
0: ए भाई खबर नवीसा, ठीक ठीक जिनी बात है, आने मंदरेरा फूल चढ़ाऊ और तो कहूँ। बड़े
1: अन्ना साहेब किर्लोस्कर, यहाँ जन्म आज दिन 1843 में यो, यहाँ असली नाम बलवंत पांडुरंग किर्लोस्कर यो, ए प्रसिद्ध नाटककार।
0: ओ ठीक ठीक है, खेल तमाशा मानता।
1: हाँ नाटक रहता
0: वो तो आनी कोई नहीं भूल सके, कोटी कोटी नमन है मंदरेरा फूल चढ़ाऊ। बड़े
1: अहिल्या बाई होलकर, आज दिन 1725 में महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में जन्म लिया, यह मालवा साम्राज्य महान मराठा शासिकारी।
0: ओहो अहिल्या बाई होलकर नाम हुनियो भाई
1: है नी। हाँ। लोक माता और पुण्य श्लोक रूप जान जाते।
0: अरे हाँ भाई, झांसी की रानी हुई जी, हुई है
1: हुई जी।
0: तो है जो आनी कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा। बड़े
1: राजीव चंद्रशेखर, आज दिन 1964 में जन्म लिया, भारतीय राजनीतिज्ञ और उद्यमी रहे।
0: ओहो ठीक ठीक ठीक।
1: और आज टाइम इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कौशल विकास
0: भगवान हजरत हजरा के आने नशो का काम
1: मंत्री भी है।
0: मुबारकबाद है। बड़े
1: राज खोसला, यहाँ जन्म आज दिन 1925 में यू, हिंदी सिनेमा रहे सबू सफल और दूरदर्शी निर्देशक रिया।
0: ओहो एकदम है क्या है जी को पास हुआ।
1: हाँ पास हुआ,
0: चौकी है जी फिल्म बनाई,
1: कई हरी अच्छी अच्छी फिल्म बनाई।
0: वाह भाई बनाई तो क्या नहीं बढ़िया ही है, तो आ रही कोई बनाई फिल्म रो कोई गीत रो हुना दे और तो मुकम।
1: हाँ डबल बा हुनो।

0: भाई यह तो जोर है जो जिंदगी दो रस्ता है। भाई भाई यह तो जोर है जो कह नहीं मारी मगज में बैठो। वाह भाई है जो को कह नहीं अगर जी हम बड़े आगे फरमाओ आप।
1: हाँ मैं जी तो बहुत देर से बात कर रहा हूँ कमला दास। आज दिन 2009 में पुणे में होती है भारतीय कवियत्री और लेखिका रही। अंग्रेजी में भी कविता लिखती और मलयालम में अपनी तीखी कहानी वास जान जाती।
0: वाह कहने के भाई विदुषी महिला ही और चौकी कहनी रचना व रची तो आने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा भूल चढ़ा हूँ बड़े
1: बड़े अनिल विश्वास। आज दिन 2003 नई दिल्ली में फौत हुई है हिंदी सिनेमा एक महान संगीतकार और पार्श्व गायक रिया।
0: ओ गाव तो यहाँ है
1: संगीतकार। हाँ
0: वाह भाई वाह तो कह है जिको कहनी का आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा भूल चढ़ा और कोई बजेड़ो कोई गीत वो कहनी बाजो है जिको होना
1: कष्टानी शुरुआत ऐसी करी।
0: वाह तो कहीं कौन भाई मैं थे मन तो की मैं आयो कौन कहूँ है आगे बदलो।
1: एक है निर्देशक जॉन अब्राहम आज दिन 1937 में फौत हुआ है भारतीय फिल्म निर्माता लघु कथा लेखक और पटकथा लेखक भी रहा।
0: ओ नवे टाइम में नहीं
1: हाँ और ये मुख्य रूप में मलयालम फिल्म में काम कर।
0: वाह साहब की कोनी का नवा नवा काम करिया और जट करिया जी कोई मिनक भूले कोनी कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: बड़े द्वारका प्रसाद मिश्र आज दिन 1988 दिल्ली में फौत हुआ है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता पत्रकार भी रिया।
0: ओ हो देश आजादी रे सिपहिया और जुलम है जो अत्याचार अंग्रेजा सहन करियो आजाद करान किया तो आने कोई नहीं भूल सके पर बाते पोर है जो धोख देवा कोटि कोटि नमन करा मलेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बोले संताराम बी है आज दिन 1986 में फौत हुआ एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और हिंदी राज लेखक रिया।
0: वाह भाई देखे गुणी विद्वान हा तो करियोड़ा कम कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावा बड़े
1: बड़े गुरनाम सिंह आज दिन 1973 में फौत हुआ भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाब का छठा मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
0: ओहो
1: कानून की पढ़ाई भी करी है
0: भाई घना कह नहीं ऊंचे ओदे मत भूगा सा तो सो का काम करी ओड़ा कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: भले के गायक आज दिन 1922 में फौत हुआ ये हिंदी सिनेमा का मशहूर गायक रहे।
0: ठीक है नवा जमाने
1: हाँ यहाँ पूरा नाम कृष्ण कुमार कुनाथ रिया।
0: वाकई कौन भाई नवा हर टाइम रहा है तो अच्छो की बात है तो आप फोत होगा कम उम्र में गया परा तो आप री रचना रचन किया तो बे है जो कह नहीं कोई मिटे कोनी दो आखड़ी रो रही कोई गायड़ो गीत तो हुना ही दो और
1: मेरी मार माता अच्छो गाना गाया
0: हाँ
1: हुना।

0: वाह भाई वाह, मैं बात बढ़िया हुआ है, बात है भाई सैन है जो कर गई तावड़े में कटी जाई जो मैं ठाडे ठाडे जानो कोई काम काज कर लो और खेत खड़े काम है तो आप जान के जान कर लो ठीक है। और मैं देखो थे अगजी करो कह नहीं कह रसोड़े की तैयारी और एक कांदा लहसुन छोल दो और है जो माँ रसोड़ो जी तैयार और हूँ फेर लू माड़ा माड़ा फेर बैठो हूँ जिते रसोड़ा हूँ है जो कह नहीं बेड़ू बड़ी बहादुर जी हमें तारा ही खासा ऊंचा आएगा देखो अंधारी होगो प्रोग्राम रो टाइम होगो पूरा तो भाई सैनो लेवा ही राम राम
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा रेरी कूंच, आकाशवाणी जोधपुर का यह सूर्यनगरी चैनल है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी जोधपुर का यह सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी

0: देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से

0: वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative

0: John Kiraddi and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का यह सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से विशेष प्रसारण।

उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की

0: प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु यर्रय्या एंड पार्टी accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri Asanapurapu Yerraya is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम यरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु यर्रय्या एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री यरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री यरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण और संत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री अस्नापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashvani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई।

0: आई है। साजिद बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advice.